इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: नमस्कार, मी शर्मिला राजाराम शिंदे आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे कैदी को देखा है जो एक बहुत मजबूत और घनी जेल में बंद हो, चारों तरफ लोहे की सलाखें हों, ऊंची दीवारें हों, तभी अचानक उस जेल का दरवाज़ा खुलता है और जेलर बाहर आकर उसे कहता है कि लो, तुम आज़ाद हो, बाहर निकलो और खुली हवा में अपनी ज़िंदगी जियो। लेकिन वह कैदी उस दरवाजे की तरफ देखने के बजाय जेल की उन्हीं काली दीवारों से लिपट जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे तो इसी कोठरी के अंधेरे से प्यार है। आप ही बताइए, ऐसे कैदी की नासमझी पर कोई क्या कहे। कबीर साहब आज हमें समझा रहे हैं कि हमारी हालत भी ठीक वैसी ही है। गुरु हमें आज़ादी का रास्ता दिखाते हैं, बंधनों से मुक्त होने की चाबी देते हैं, लेकिन हमारा यह चंचल मन उन्हीं पुरानी आदतों और वासनाओं की बेड़ियों को चूमता रहता है। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह दार्शनिक सूत्र। कोटि कर्म फल करे यहू मन विषयास्वादी, कोटि कर्म फल करे यहू मन विषयास्वादी, सतगुरु सबद न मानई जन्म गवाया बादी। कोटि कर्म फल करे

दिन। श्रोताओं, कबीर साहब मन के भटकाव और कर्मों के अंतहीन जाल को प्रकट करते हुए कहते हैं, कोटि कर्म फल मैं करें। यह जो हमारा मन है, यह क्षण भर भी शांत नहीं बैठता, यह लगातार कोटि यानी करोड़ों कर्म करता रहता है और फिर उन कर्मों के फल के अंतहीन चक्रव्यूह में खुद को फंसाता चलता है। यह ऐसा क्यों करता है? यहू मन विषया स्वादी, क्योंकि इस मन को संसार की विषया यानी विषय वासनाओं, लालच, ईर्ष्या और वासना के स्वादी यानी चस्के लग चुके हैं। वह उन्हीं क्षणिक सुखों में अपनी ऊर्जा नष्ट करता रहता है। इस भटकाओं की सबसे दुखद विडंबना क्या है? अगली पंक्ति में कबीर कहते हैं, सतगुरु शब्द न मानई। जब इस भटके हुए मन को सही रास्ता दिखाने के लिए सतगुरु अपने ज्ञान का शब्द यानी अनमोल वचन सुनाते हैं, तो वह अहंकारी मन उसे मानई नाहीं यानी अनसुना कर देता है, उसकी अवहेलना कर देता है। जन्म गवाया बादी, और इसका परिणाम यह होता है कि विधाता ने जो यह अनमोल मानव जन्म दिया था, उसे यह मन वासनाओं के पीछे भागते भागते बादी यानी पूरी तरह व्यर्थ और कौड़ियों के भाव गवा देता है। यह दोहा कर्म सिद्धांत और गुरु तत्व की अनिवार्यता का महासूत्र है। भारतीय दर्शन में माना गया है कि मनुष्य का हर विचार और हर कर्म एक नया बीज होता है, जिससे कर्म संस्कार बनते हैं। करोड़ों कर्मों का यह जाल इतना सघन है कि जीव इसमें युगों युगों तक भटकता रहता है। इस अभेद्य किले को तोड़ने की ताकत केवल सतगुरु के शब्द में ही होती है, जो विवेक की तलवार बनकर हमारे बंधनों को काटता है। कबीर समझा रहे हैं कि शाब्दिक ज्ञान या किताबों को पढ़ लेना गुरु शब्द को मानना नहीं है। गुरु शब्द को मानने का अर्थ है अपने आचरण को गुरु के वचनों के अनुकूल ढाल देना। जो मन गुरु के वचनों को अहंकार वश ठुकरा देता है, वह भवसागर के थपेड़ों में डूबने के लिए अभिशप्त हो जाता है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा शांत होकर विचार कीजिए कि हम सुबह से शाम तक कितने कर्म इकट्ठा कर रहे हैं, कितनी इच्छाएं, कितनी शिकायतें, कितनी चालाकियां हमारे भीतर 24 घंटे चलती रहती हैं। और जब कबीर जैसे संतों के वचन, सतगुरु के सूत्र हमारे कानों में पड़ते हैं, तो क्या हम सचमुच बदलते हैं, या फिर थोड़ी देर भावुक होकर हम वापस उसी विषय स्वाद के संसार में लौट आते हैं? आज कोशिश कीजिए इस आत्मघाती

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत। कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेरी खुशी मुझसे छीन लेती हैं, या मैं देखूं तो मैं खुश नहीं रह पाता। उसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आई थी वो थे मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस। कहीं ना कहीं जो गुजर गया, जो कल था, उसे ऐसे पकड़ा हुआ था मैंने, जब लेट गो किया या उस पास्ट को प्रेजेंट नहीं बनने दिया तो मेरी खुशी फिर मैं क्रिएट कर पा रहा था। अब आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर की तरफ देखते हैं। फ्यूचर यानी मेरी प्लानिंग मेरे जीवन का आधार हो जाता है कि मुझे यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ ये सब कुछ करना है। तो क्या उसको करते हुए भी मैं कहीं अपनी खुशी से तो परे नहीं जा रहा? कोशिश करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: पास्ट को तो हमने मान लिया, हम सब जानते हैं सिस्टर शिवानी की पास्ट को नहीं पकड़ कर रखना चाहिए। और बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने पिछले कई कड़ियों में ये बात आई कि क्या ऐसा प्रोसीजर है कि हम जो गुजर गया उसे जाने दें और उसे अपना प्रेजेंट ना बनाएं। लेकिन फ्यूचर प्लानिंग तो हर कोई करता है। फ्यूचर प्लान्स की बात करते हैं, गोल्स की बात करते हैं, अचीवमेंट्स की बात करते हैं, और फिर एक लक्ष्य साध कर उस पर आगे बढ़ते जाना। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि मैं अपने फ्यूचर को ध्यान में रखता हुआ अपनी आज की स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाऊं।
1: Yeah, very important, क्योंकि इस पर जब हम बात करें तो बहुत ज्यादा questions मुझे लगता उठने वाले हैं कि क्या फ्यूचर प्लान नहीं करें। अलग अलग तरह से हम इसको देखते कि कैसे हम, जैसे हमने पिछली बार देखा कि हम पास्ट में बहुत ज्यादा जीते हैं, हम यहाँ हैं लेकिन मन पास्ट के बारे में सोच रहा, उतना ही हम देखते कि हम फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा जीते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं खुशी को जब हम ढूंढते हैं तो खुशी को हम फ्यूचर में बहुत ढूंढते हैं। आई एम नॉट हैप्पी नाउ बट आई विल बी हैप्पी
0: इफ दिस थिंग हैपेंस, वंस आई विल अचीव दिस।
1: सो व्हेन आई से आई विल बी हैप्पी व्हेन दिस हैपेंस, आई हैव पुट माय हैप्पीनेस इनटू द फ्यूचर, एंड तब मेरा सारा ध्यान ये होता कि ये होगा तो खुशी होगी। अब दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, अगर ये होगा तब खुशी होगी। जब ये थॉट आती तो साथ में ये भी थॉट आ जाएगी, अगर नहीं हुआ तो। यू सी, व्हेनेवर देयर, नो, इट कुड बी फियर, इट्स ओनली अ फियर,
0: एंड आई विल नॉट बी हैप्पी, यू नो, इट विल टेक अवे माय हैप्पीनेस।
1: दैट इज व्हाट वी सॉ अर्लियर, कि जब भी हैप्पीनेस किसी चीज पर डिपेंडेंट होती है तब फियर ऑटोमेटिकली आ जाता, क्योंकि जहां डिपेंडेंसी है वहां ये इनसिक्योरिटी तो होने ही वाली है कि अगर वो नहीं हुआ तो, या अगर वो चले गए तो, व्हाटएवर। सो डिपेंडेंसी एंड इनसिक्योरिटी ये साथ साथ जाएंगे। जहां मेरी किसी चीज पर डिपेंडेंसी है तो एक थॉट अंदर इनसिक्योरिटी का साथ साथ आ ही जाएगा। तो हैप्पीनेस एंड फियर कैन नॉट बी टुगेदर। आई एम लुकिंग फॉर हैप्पीनेस देन, दैट मीन आई एम नॉट हैप्पी नाउ, आई एम सेइंग ये होगा तो आई विल बी हैप्पी, लेकिन नाउ व्हाट एम आई क्रिएटिंग? साथ साथ मैं वो फियर के थॉट्स भी क्रिएट करना शुरू कर देती कि अगर ऐसा हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो, अगर नहीं हो पाया, अगर वो नहीं कर पाए, अगर वो कल मेरे साथ नहीं हुए। सी, बहुत सारी चीज़ें हमें जीवन में मिली हैं लेकिन हम बहुत बार फियर में जीते हैं कि कहीं ये हमारे से छूट ना जाए। तो उस प्रोसेस में क्या होता, हम उनको प्रेजेंट में, सी, फियर ऑफ लूजिंग जॉब, फियर ऑफ लूजिंग प्रॉपर्टी पोजेशन, फियर ऑफ लूजिंग फैमिली, कहीं मेरे परिवार को कुछ ना हो जाए, एंड सबसे ज्यादा फियर कहीं मुझे कुछ ना हो जाए। अब इन सारी लिस्ट ऑफ फियर्स में हमें ये भी पता है कि एक ना एक दिन सारी चीजें जो मिली हैं वो जाने ही हैं, लेकिन वो जब तक मिली हैं उनको इंजॉय करने की बजाय मैं फ्यूचर को एंटिसिपेट कर करके अभी क्या क्रिएट करती? See, once we understand happiness creation है यहाँ पर, happiness is not outside, तो मुझे सिर्फ सारा दिन क्या चेक करना, मेरी thoughts क्या है, मेरी thoughts क्या है। तो अब जितनी देर मैं ये सोच रही हूँ ये होगा तो, साथ में दूसरी thought ही आएगी,
0: अगर ये नहीं हुआ तो।
1: तो अब जब मैं fear, वैसे भी जब मैं सोच रही हूँ कि ये होगा तो अभी मैं खुश नहीं हूँ, मैं अपने आप को ये कह रही हूँ ये होगा तो खुशी होगी, तो अभी का इमोशन कौन सा है? फियर का है। तो इसलिए हर पल हमने देखा, इस पल में अगर हम इस पल के बारे में सोच रहे हैं नेक्स्ट वाले, तो ये पल कैसा बीता? डर में। तब तक फिर यहाँ गए, तब कौन से पल के बारे में सोचा? नेक्स्ट वाले।
0: तो एंटिसिपेशन में, डर में, डर में, ये होगा।
1: ऐसे करते करते आपकी पूरी जर्नी किस में बीती?
0: और वो पल तो निकलते ही गए, मैंने सोचा था कि एक साल के अंदर अंदर ये होगा.
1: देखो अलग अलग तरह से हम फ्यूचर के बारे में सोचते. एक होता है जो लोग बहुत चिंता करते हैं, जो मेरे को लगता है हम सब चिंता करते हैं, वरी, वेरी वरी काइंड ऑफ पर्सनालिटी. जो वरी करते हैं वो किस के बारे में सोच रहे हैं?
0: फ्यूचर
1: के बारे में सोच रहे हैं. अगर ये हुआ तो एक दिन सिर्फ चेक करना कि वरी की जो थॉट्स होती हैं उसमें होता क्या है, किस तरह की हम थॉट क्रिएट करते. हम आने वाले पल के बारे में, फ्यूचर के बारे में एक इमेज क्रिएट कर देते, वो इमेज अच्छी नहीं होती है. चिंता मतलब कि कुछ बुरा होने वाला है, चिंता मतलब कुछ अच्छा होने वाला है, ये थॉट नहीं आएगा. तो चिंता मतलब कुछ ट्रेजेडी, कुछ कैटास्ट्रोफ, कुछ गड़बड़ वाला होने वाला है, वो इमेज हम अभी क्रिएट कर देते और अभी इस पल उस इमेज को देख देख के
0: डरते
1: रहते हैं. सो आई बेसिकली क्रिएट अ फ्यूचर इमेज, नॉट अ प्लेजेंट वन, एंड आई यूज दैट पिक्चर इन माय प्रेजेंट मोमेंट एंड आई क्रिएट पेन. सो माय एवरी मोमेंट वरिंग अबाउट द नेक्स्ट मोमेंट, माय एवरी मोमेंट इज पासिंग इन पेन बिकॉज आई एम क्रिएटिंग अ पिक्चर ऑफ.
0: सपोज आई एम वेरी पुअर, यू नो मेरे घर में सब क्योस है, मेरे जीवन में क्राइसिस आया हुआ है जिसको मैं कुछ नहीं कर पा रहा. दैट इज द टाइम व्हेन आई, यू नो, अपना काम तो कर्म तो करता ही रहूंगा, लेकिन यू नो यू कीप ऑन एंटिसिपेटिंग योर फ्यूचर एंड वेयर यू सी दैट यू नो यू विल गेट मनी, ये चीजें सॉर्ट आउट होती जाएंगी, होता जाएगा. एटलीस्ट इट्स गिविंग मी हैप्पीनेस फॉर दैट टाइम बिकॉज अभी जो मैं चाह रहा था वो नहीं हो रहा.
1: इसको हम कहेंगे ड्रीमिंग पर्सनैलिटी. कि आप अभी यहाँ है लेकिन यहाँ आप टुमोरो में है. यू ऑलरेडी गॉन टुमोरो एंड यू विल फाइंड पीपल हु लव टू बी इन देयर टुमोरो. जिसको हम कहेंगे ये तो खाबों में ही रहते हैं अपने ज्यादा दिन. क्यों वो खाबों में रहते हैं? उनको आज पसंद नहीं है. दे आर इन पेन. सी व्हेन विल आई एस्केप फ्रॉम टुडे एंड लिव इन द टुमोरो.
0: आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर एक्चुअली, यू नो, वी डोंट वांट टू लिव इन प्रेजेंट.
1: नीड्स टू चेक. हर एक अपना अपना देखेगा.
0: वी डोंट वांट टू लिव इन प्रेजेंट.
1: क्योंकि अभी मेरे अंदर दर्द है, मैं उस दर्द के ऊपर काम नहीं करना चाहती हूँ, मैं मेहनत नहीं करना चाहती हूँ इससे, पर मैं फील तो अच्छा करना चाहती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ
0: कहीं पे भी. हाँ, किसी
1: और. सी वी टेकिंग डिफरेंट वेज ऑफ स्विच, यू नो, एस्केपिंग दीज थॉट्स ऑफ पेन. जो हमने देखा, चाहे टीवी देखना है, चाहे हॉलीडे पर जाना है,
0: वो
1: ये क्या
0: है?
1: कर रहा था, वो ये कर रहा था कि ये अभी वाली जो दर्द वाली थॉट्स हैं इनको थोड़ी देर के लिए, एटलीस्ट चलो घंटे के लिए भी, एटलीस्ट एक घंटे के लिए मैं इनको साइड पे करूँ, मैं कुछ और देखूँ, आई विल फील गुड. जितनी देर मैं फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ, सपोज मैं 15 मिनट, अभी मैं बहुत दर्द में हूँ लेकिन मैंने माइंड को अपने अगले साल में शिफ्ट कर दिया और मैं फ्यूचर के बारे में सोचते गई एंड आई क्रिएट अ ब्यूटिफुल फ्यूचर. तो 15 मिनट क्या हुआ? आई एस्केप्ड, आई रैन अवे फ्रॉम माई प्रेजेंट थॉट्स ऑफ पेन एंड आई लिव्ड इन द फ्यूचर एंड आई क्रिएटेड अ वेरी ब्यूटिफुल फ्यूचर. आई फेल्ट नाइस आफ्टर दैट.
0: आई कम बैक रिफ्रेश्ड. But can I, can't I
1: I don't come
0: more?
1: back refreshed. I come back even more in pain. क्योंकि ऐसे
0: ये तो अभी बचा है यहाँ पे.
1: अभी तो नहीं है ना, लेकिन जो भी हम कहते हैं ना, पास्ट की भी मेमोरीज, चलो आज बहुत दर्द में है लेकिन पिछला साल बहुत अच्छा बीता था, राइट? तो चलो पिछले साल को याद करके मुझे बहुत अच्छा लगता है. 10 मिनट याद कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा. 11वां मिनट क्या हुआ? दर्द हो गया. लेकिन अभी तो नहीं है ना वो
0: अभी क्यों नहीं आ सकता? एंड देन दिस, यू नो, कि वही चीज क्यों नहीं हो जाती?
1: पेन इज इन द प्रेजेंट मोमेंट, तो मुझे एड्रेस भी उसको कहाँ करना पड़ेगा, उसको फेस भी कहाँ करना पड़ेगा? यहाँ. अगर इफ आई कीप रनिंग अवे फ्रॉम माई पेन, दैट्स नॉट द सोल्यूशन. बीमारी है, लेट्स एड्रेस द इलनेस. बीमारी को ठीक करते हैं. खाबों की दुनिया में जी के कि ये ठीक हो जाएगा तो ऐसा होगा, ठीक हो जाएगा. और अगर आज उसको ठीक नहीं किया, तो अगर आप सोचते भी रहे कि ये कल ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा. अगर आज हम दर्द में हैं और अगर हमने उसको ठीक नहीं किया अपने थॉट्स को, तो कल कौन सी थॉट्स होंगे? सिचुएशंस चेंज हो जाएंगी. सी, हम क्यों कल के बारे में सोचते? क्योंकि हमने सोचा खुशी परिस्थितियों पे डिपेंडेंट है. तो आज परिस्थिति ठीक नहीं है, मैं दर्द में हूँ, लेकिन आई एंटिसिपेट कि कल परिस्थिति ठीक हो जाएगी एंड मैं कंक्लूजन ये ले आती हूँ कि जब परिस्थिति ठीक हो जाएगी तो कल मैं खुश होंगी. व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज कि यस, परिस्थितियाँ कल बहुत अच्छी हो जाएंगी. जो आपने जैसे कहा कि समवन इज वेरी पुअर, आज उनके पास धन नहीं है, हो सकता है जैसे वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कल उनके पास बहुत धन आ जाए, वेरी गुड, बट इट डज नॉट मीन कि उनके पास तब बहुत खुशी भी आ जाएगी. खुशी यहाँ की क्रिएशन है और उसको हमें हर पल में क्रिएट करना होगा. अगर हमने आज उसको नहीं क्रिएट किया, बिकॉज थॉट इज अ सीरीज ऑफ थॉट, तो अगर मेरा दिस थॉट इज इन पेन, देन माई नेक्स्ट थॉट will automatically be in pain, then the next thought will automatically be in pain. And that's why we say, if today is in pain and aaj usko address nahi kiya, to tomorrow will automatically still be in pain. Aap kitna bhi sochte jao ki bahut acha ho jayega, bahar acha ho jayega, lekin yahan to fir bhi dard create hoga.
0: To ye kaha jata hai ki sapno mein rehna chahiye ya sapne lene to chahiye kam se kam. So again, I just want to know ki whether it's a right personality, right way of looking.
1: Escaping from the present. What is, you know, fantasizing bahut zyada bhavishya ke bare mein, escaping from the present. So how far would that be beneficial for me? Again, main energy, main apni wo thought power use kar raha hoon kuch aisi cheez ko create karne mein jo ki mere control mein
0: hai hi nahi.
1: Mere control mein sirf ye wala pal hai aur is pal mein meri sthiti, ye mere control mein hai, iske ilawa mere control mein कुछ भी नहीं.
0: बट क्रिएटिविटी तो ये कहा जाता है कि यू नो, क्रिएटिंग योर ओन ड्रीम्स,
1: क्रिएटिंग योर मोमेंट राइट नाउ. आप आज क्रिएट करते जाओ, आज से आपका कल ऑटोमेटिकली अच्छा क्रिएट होता जाएगा. सी व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज अ सीरीज. आज अच्छा फील कर रहे होगे, घर पहुंचोगे, सबके साथ अच्छे होगे, रात को नींद अच्छी आएगी, कल सुबह उठोगे अच्छा ही फील करोगे. लेकिन आज चिंता में बिता दिया, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, तो कल क्या होगा?
0: कल वो आ जाएगा जिसने मुझे खुशी देनी है.
1: खुशी देनी है, वो सिचुएशन आ जाएगी. लेकिन आज अगर मैंने चिंता क्रिएट की थी, तो कल भी मेरे मानसिक स्थिति कैसी होगी?
0: और हो सकता है वो सिचुएशन जब तक आए तब तक मेरे सर में दर्द हो चुका.
1: और कल मेरे पास एक और कल है ना चिंता करने के लिए. सी, अगर मेरी आदत बन गई है चिंता करने की, तो दिस इज गोइंग टू गो ऑन विद मी टिल द एंड. Someone very beautifully said at the ending phase of their, you know, this particular birth, they said, I have spent all my life worrying about those things which never actually happened. Hum puri jeevan bitate hain un baaton ke bare mein soch ke chinta karke jo actually hui nahi. Jab wo hogi tab dekhenge na. Why do I create it beforehand? To fir hum kehte, main isliye chinta karta hun because I care. I worry because I care. To humne worry aur केयर को जोड़ दिया. केयर तो प्यार है, स्नेह की शक्ति है, और वरी फियर की शक्ति है. तो फियर और स्नेह ये इकट्ठे नहीं हो सकता. दीज आर टू एनर्जीज.
0: आई एम अफ्रेड एक्चुअली दैट आई विल लूज फियर.
1: सो ये जो चिंता करने की आदत है, भविष्य का क्रिएट करके अभी डर में जीने की आदत है, इससे हमारी बहुत सारी एनर्जी डिप्लीट हो जाती, और इससे मेरा प्रेजेंट मोमेंट डेफिनेटली दर्द में बीतता. दूसरा जो आपने कहा अचीवमेंट, अचीव करना है, वेरी गुड, आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग. लेकिन उनको भी जो इस तरह की जीवन जीते हैं, जो डिपेंडेंट है अचीव करने में, तो क्या होता है उनका हर टाइम जो मानसिक स्थिति है ना, इट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट टू अचीव नेक्स्ट. यू नो, वो ऐसे नहीं बैठ पाएंगे विद नथिंग रियली हैपनिंग हियर, नेक्स्ट व्हाट टू अचीव, क्योंकि वो जो अचीवमेंट है वो उनको एक
0: स्टिमुलेंट
1: है, वो उनको एक किक देता है. समटाइम्स इट कुड बी रिकग्निशन, औरों का अप्रूवल, औरों से रिकग्निशन. समटाइम्स इट कुड बी जस्ट द रियलाइजेशन, हो गया ये मेरे से, ये भी हो गया. या समटाइम्स इट इज काम तो करते ही जाना है, क्योंकि उसी से मुझे खुशी मिलती है. तो वो क्या करते हैं, अपना सेट करते जाते हैं, यू नो, टिक, चेकलिस्ट होती जाती है, ये हुआ, अचीव किया. जिस पल अचीव करते हैं तो एक रिलीफ एक्सपीरियंस होता है, चलो ये भी हो गया, ये रिलीफ है, ये खुशी नहीं है, और ये भी बहुत थोड़ी देर रहेगी, क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट, अब नेक्स्ट क्या अचीव करना है. तो जिन्होंने अपनी खुशी को इस अचीवमेंट पर भी डिपेंडेंट कर दिया, तो वो खुश भी नहीं होते उस पल, सिर्फ रिलीव्ड होते हैं, और वो भी लेकिन कितनी देर के लिए, शॉर्ट, नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट. सो वी वॉन्ट हैप्पीनेस टू बी every
0: constant
1: time,
0: yes,
1: every time, not fear mein ya insecurity mein ya anticipation mein next kya hoga ya ye bhi karna hai, kyunki jab ye kar lunga tab khushi hogi. Tab unka sara focus kis pe shift ho jata hai, ab kya karna hai next. Us process mein present pal beet jata hai. Ab aise logon ke jeevan mein achievements bahut sare aa jate. They achieve a lot, kyunki unka focus hi life mein wo hai, ye achieve karna hai. Lekin khushi, they need to ask themselves, दैट दे नो बेस्ट कि उनका, क्योंकि वो जो पूरी यात्रा होती है फ्रॉम वन अचीवमेंट टू द नेक्स्ट अचीवमेंट वो काफी
0: उसमें काफी वो जो फियर ऑफ यू नो लूजिंग एंड देन जो मेरे पास है वो भी छूट जाएगा या वहां तक पहुंच जाऊंगा तब. वंडरफुल आई थिंक.
1: और वो कहीं ना कहीं उनकी खुशी उस अचीवमेंट पर बहुत डिपेंडेंट हो जाती है, यू नो, क्योंकि वो एक संस्कार बन गया.
0: जब वो नहीं मिल रहा हो तो तब तक ऐसे रहते हैं, ऐसे हो जाते हैं.
1: और उस अचीवमेंट को पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं. दिस इज वेयर अ लॉट ऑफ अस स्टार्ट मेकिंग कॉम्प्रोमाइजेस, चाहे वो अपने वैल्यू सिस्टम पे है, चाहे वो अपनी फैमिली पर है, चाहे वो क्यों, क्योंकि अचीव करना, अचीव करना, अचीव करना, अचीव हो जाएगा खुशी, पता नहीं, इट्स अ क्वेश्चन मार्क, दे हैव टू आस्क देमसेल्व्स. एंड जैसे ड्रीम करना, बहुत ज्यादा भविष्य के बारे में सोचना, अनदर वेरी कॉमन थिंग जो हम करते हैं, जो हम फ्यूचर में खुशी ढूंढते हैं, दैट इज आवर डिजायर्स. एवरीवन, वी ऑल से के इच्छाओं के बिना तो जीवन कैसे बीत सकता है. आई डिजायर फॉर दिस, आई डिजायर फॉर दिस, अगेन सेइंग ये होगा. इट कुड डिजायर फॉर ऑब्जेक्ट कि ये मिलेगा तो खुशी. आई कुड डिजायर फॉर मोर लव फ्रॉम पीपल. आई कुड इवन डिजायर फॉर मोर टाइम. और टाइम मिल जाए ना मुझे तो 24 घंटे ही कम पड़ते. तो ये डिजायर्स की भी जो हमारी लिस्ट है वो बहुत लंबी होती जाती और कई बार तो पूरी भी होती जाती वो हमारी डिजायर. लेकिन जितनी डिजायर्स पूरी होती उतनी लिस्ट
0: और बड़ी होती जाती
1: और भी लंबी होती जाती. क्योंकि ये इच्छाओं के पीछे एक बहुत सूक्ष्म सकल जो थॉट है वो ये कि जब ये डिजायर मेरी अचीव हो जाएगी, आई दैट सेल्फ विल बिकम कंप्लीट. यू नो, व्हेन आई गेट दिस मोर फ्रॉम यू, आई विल बिकम कंप्लीट, आई विल बिकम कंटेंटेड. राजयोग हमें ये सिखाता, आई द सेल्फ
0: इज ऑलरेडी
1: कैन नॉट बी कंप्लीट बाय एनीथिंग आउटसाइड, आई एम ऑलरेडी कंप्लीट. मुझे कुछ भी बाहर से नहीं चाहिए जिससे मैं कंप्लीट
0: हो जाऊं. क्यों नहीं करते, यू नो, हम फील कंप्लीट क्यों नहीं करते अगर हम है, यू नो, लाइक इफ वी अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट. तो हमें ये जो अर्च है बाहर से, चाहे प्यार की, चाहे ज्ञान की, चाहे किसी भी चीज की या अचीवमेंट की, ये फिर क्यों है?
1: बिलीफ सिस्टम. क्योंकि फीलिंग किस पे डिपेंडेंट है?
0: बिलीफ सिस्टम.
1: अगर मेरा बिलीफ ये है कि ये होगा तो आई विल फील गुड, ये होगा तो आई विल फील कंप्लीट, so then I will feel like that only, and I'll keep looking for
0: let's it. Try to change that and say that I'm already full,
1: I'm complete, I'm full, I'm beautiful.
0: But how will I create that belief system now?
1: I create
0: by reinforcing it now.
1: I create, abhi humne create kar diya already. Ab isko kya karna hai, is belief system ko jeevan ki yatra mein leke chalna hai. Jaise hi koi thought aaye ye hoga to mujhe acha lagega, immediately stop and tell yourself एक दिन इसको करके देखो, यू विल सडनली स्टार्ट फीलिंग वेरी वेरी लिबरेटेड. क्योंकि अभी तो हम इतनी चेन्स में बंधे हुए हैं कि ये सब होगा देन आई विल फील गुड, एंड ये सब कुछ मेरे अनुसार.
0: लेकिन वो जब हो रहा होता है तब तो वी फील गुड, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड दैट. ओह, we've created the thought कि अगर वो होगा तभी फील करेंगे, इसीलिए जब वो होता है तो हम फील करते हैं.
1: लेकिन उसके बाद फिर हमने एक और thought भी तो create हो गया था, अब ये होगा then I will feel good. See, जब से ही वो dependent है तो वो हमेशा ही dependent रहेगी. तो जैसे ही suppose I am dependent कि आप मुझसे अच्छी तरह से बात करें then I will feel good. तो आपने मुझसे बहुत अच्छी तरह से बात, I feel very good. लेकिन अब I am dependent कि आप हमेशा मुझसे अच्छी तरह से बात करेंगे, that is something I don't.
0: I expected then,
1: and
0: you know.
1: Then it's not only on you. Now I expect कि सब लोग हमेशा मुझसे बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे. How far is that in my control?
0: एक बार मेरा एक belief system ये reinforce हो गया कि मैंने ये सोचा था कि ये अच्छी तरह से बात करेंगे, मैं feel good करूंगी, वही हुआ, तो अब हर जगह यही चलेगा.
1: Absolutely.
0: तो again I think we can reverse it. इस पर मैं बात करती हूँ कि कैसे, how to do that. लेकिन उससे पहले एक thought power की जब बात होती है कि whatever you want in life, you know, स्थूल में भी करें या जो भी चीज चाहिए, उसको क्रिएट करो, उस फ्यूचर को देखो और उसके बाद उसको विजुलाइज करो. मतलब थॉट क्रिएट किया, सपोज मुझे एक पोस्ट चाहिए, अच्छा मेरे को अपना कंपनी का सीईओ बनना है. आई क्रिएट दैट थॉट एंड देन आई स्टार्ट विजुलाइजिंग माई सेल्फ, स्टार्ट लिविंग इन दैट एंड स्टार्ट लिविंग इन, यू नो, गिविंग इट ऑल विदाउट एनी ट्रेस ऑफ, यू नो,
1: डाउट.
0: एंड इट हैपेंस. And people are doing it now. I'm saying, like, it's so much in thing now.
1: True.
0: But then, am I able to live in my present then?
1: It all depends how you're feeling that time. See, some people are being able to achieve it, and yet at the same time, there are many, many people who are not being able to achieve this. Kyunki jaise hi, it's very good.
0: Because I tried this with myself, I was not able to achieve this.
1: Because once we understand thoughts create destiny, तो हमें जब ये समझ में आ गया तो हमने इसको किन चीज़ों के लिए यूज़ करना शुरू किया. आई क्रिएट अ थॉट तो मुझे ये मिलेगा, ये प्रमोशन मिलेगी, ऐसा हो जाएगा मेरे जीवन में. फिर हमने वो एनर्जी उसके प्रति क्रिएट करनी शुरू कर दी. लेकिन हम बहुत कम हैं जो उसमें एक भी थॉट ऑफ डाउट नहीं क्रिएट करते. क्योंकि जैसे हमने पहले देखा, ये होना ही चाहिए, ये हो, यू नो, आई गेट अटैच टू द आइडिया कि ये मुझे मिलना ही चाहिए. तो कहीं ना कहीं एक थॉट तो दर्द की जरूर क्रिएट होती,
0: सपोज
1: नहीं मिला तो. एंड मैं बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाती हूँ उस प्रेडिक्टेड फ्यूचर पे, है ना. ये होना ही है, दिस हैज टू हैपन. इफ इट हैपन्स वेरी गुड, लेकिन बाय चांस नहीं हुआ तो. अगर वो नहीं हुआ, क्योंकि जब सब कुछ जो हो रहा है वो सारा कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है. अब वो जब नहीं होता, आई गो एब्सोल्युटली. जब हम कहते हैं थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी, तो हमें ये समझना पड़ेगा जो थॉट्स मैं क्रिएट कर रही हूँ अभी, वो मेरी अभी की डेस्टिनी बना रहे हैं, अभी हाउ आई फील, एंड ऑल्सो वॉट इज गोइंग टू हैपन विद मी. एंड सिमिलरली अभी जो मेरे साथ हो रहा है, इट इज बेस्ड ऑन मेनी थॉट्स दैट आई हैव क्रिएटेड इन द पास्ट. अब क्या होता, मैंने अभी तो अपनी थॉट्स की क्वालिटी चेंज कर ली, लेकिन हो सकता है पहले मैंने बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी थॉट्स पहले क्रिएट की थी, विच हैज गॉन आउट इन टू द यूनिवर्स. जो हम कहते हैं ना, थ्रो दिस एनर्जी आउट इन टू द यूनिवर्स, तो वो भी तो बहुत सारी एनर्जी भेजी हुई है, विच इज ऑल्सो ऑन इट्स वे बैक. तो हम तुरंत रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, अभी मैंने ये थॉट क्रिएट किया, ये मेरे साथ हो जाना चाहिए. गेटिंग अटैच्ड टू समथिंग ऑफ द फ्यूचर, मोर इम्पोर्टेंट वुड बी अभी अपना ध्यान रखते जाए, एक तो अंदर और एक तो बाहर. काम कर रहे हैं आप, एफर्ट कर रहे हैं, सिंसियरली कर रहे हैं, हर मोमेंट को इस मोमेंट में अच्छा बिताते जाए. एंड देन आप देखेंगे जैसे जैसे एक पल अच्छा बीतेगा तो अगला पल अच्छा बीतेगा ही बीतेगा. ये पल अगर अच्छा ना तो नेक्स्ट पल तो बीतना ही है. एंड ये करने से आपके अंदर इतनी ताकत, इतनी शक्ति अक्यूमुलेट हो जाती है कि अगर सिचुएशन आपकी फेवर में नहीं भी आती, कोई भी सिचुएशन, आपके अंदर बहुत ताकत है उस सिचुएशन को फेस करने की. लेकिन हर पल अगर इस फियर में या एंटिसिपेशन में अगले पल के लिए बिता दिया, तो हम इतने कमजोर हो जाते कि जब कोई सिचुएशन हमारे सामने आती जो हमारे फेवर में नहीं है, आई डोंट हैव द पावर टू फेस सिचुएशंस. सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं. ऑल दैट वी आर ट्राइंग टू डू, इस पूरी सीरीज में हम क्या ट्राई कर रहे हैं, हम क्या ऐसा करें ताकि हम पावरफुल रहे, हम शक्तिशाली रहें, ताकि कुछ भी हो जाए आई विल बी एबल टू रिमेन स्टेबल. अब जितना फ्यूचर के बारे में सोचेंगे जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, व्हाट थॉट्स एम आई क्रिएटिंग, अगेन आउट ऑफ कंट्रोल थॉट्स, अगेन फियरफुल थॉट्स, एंटिसिपेटरी थॉट्स, एनर्जी डिप्लीट होती जा रही, डिप्लीट होती जा रही, तो फिर मेरे अंदर की जो शक्ति है कम होती जा रही है.
0: तो अगर, तो हाउ टू गो अबाउट, वी हैव टू मेक आवर फ्यूचर प्लान्स, वी हैव टू मेक आवर गोल्स एंड वर्क फॉर देम आल्सो. सो व्हाट एनर्जी,
1: अगर गोल बनाना भी है आपने तो गोल बना दें, लेकिन जैसे हमने पहले भी कहा एक्सपेक्टेशन, बट विदाउट गेटिंग डिपेंडेंट ऑन द एक्सपेक्टेशन, कि एक्सपेक्टेशन रखी लेकिन साथ साथ ये भी तैयारी कर ली कि अगर पूरा नहीं हुआ तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट हर्ट. सो सिमिलरली गोल बनाना है, आप गोल बना दें लेकिन लिविंग इन द
0: प्रेजेंट,
1: ये नहीं ये होगा

0: करेंगे, तो मैं उस गोल को अचीव करने के लिए फिर कुछ भी करते जाऊंगे ना. इन द प्रोसेस आई कैन गो थ्रू स्ट्रेस, आई कैन क्रिएट एंगर, आई कैन हैव प्रॉब्लम्स इन रिल, लेकिन मुझे किसी भी तरह उस गोल को क्रिएट करना है. क्यों? क्योंकि मेरी खुशी वहां खड़ी है. यू सी, सो हाउ हेल्दी इज दिस फॉर मी? दिस आई हैव टू चेक कि मेरी एनर्जी कितनी डिप्लीट होती जा रही है. तो अगर हम एक दिन ट्राई करें इस बिलीफ सिस्टम के साथ कि मेरा जो बेस्ट मोमेंट है वो ये वाला मोमेंट है, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट द फ्यूचर, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट द पास्ट, आई हैव टू इंजॉय विद द फर्म बिलीफ कि मेरे साथ जो भी होने वाला है
1: वो
0: अच्छा होने वाला है. क्यों मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है? अगर मैं एनर्जी ही अच्छी क्रिएट कर रही हूँ अभी, तो एनर्जी जो बाहर जाएगी वही एनर्जी वापस आने वाली है. सो आई क्रॉस एवरी मोमेंट विद द फर्म बिलीफ कि मेरे साथ जो भी होने वाला है वो अच्छा ही होने वाला है. ये मुझे अभी कैसा फील कराएगा?
1: गुड, वेरी गुड.
0: बहुत लाइट लाइट. आई टेक लाइफ इन अ क्रिएटिव वे, यू नो, कि हर पल ये हल्केपन से खेलते हुए. लाइफ इज मेंट टू बी एंजॉयड. हमने उसको बहुत सीरियस, यू नो, सीरियस वो क्यों कर दिया? क्योंकि भविष्य, भविष्य का डर, नहीं हुआ तो क्या. एक एक पल को जीते जाए प्रेजेंट में. ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, करके देखना है कि एक दिन आने वाले कल के बारे में ना सोचकर आज को देखें, आज में भी हर पल को देखते जाएं, तो आपका अगला पल अपने आप अच्छा होने वाला है.
1: और उसमें कोई भी सिचुएशन भी आ जाएगी, सपोज आज मैं ठीक हूँ लेकिन अगले ही पल कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, उसे हैंडल करने की भी मेरे पास शक्ति होगी क्योंकि मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ. यू नो, कई बार क्या होता है क्योंकि हम देख ही नहीं पाते उस सिचुएशन को.
0: हर सिचुएशंस देखो आने वाली है, चैलेंजेस आने वाले हैं, लेकिन क्योंकि हमें वो अभ्यास नहीं है उस प्रेजेंट मोमेंट में रहने का, तो वो सिचुएशन आते ही भी हम बहुत सारा क्रिएट कर लेते हैं.
1: अब क्या होगा,
0: अब क्या होगा, अब क्या. एंड एक्चुअली सिचुएशन बहुत बड़ी नहीं होती है कोई भी. ये जिस फाइनेंशियल क्राइसिस की भी हमने बात की थी, इसको फेस प्रेजेंट मोमेंट में रहकर करना है, लेकिन सारी एनर्जी किस में वेस्ट हो जाती है? हम कहते हैं ना, एंथुजियाज्म खत्म, मोटिवेशन खत्म. क्यों? सारी एनर्जी किस में हो गई? अब क्या होगा, आगे क्या होगा, सेविंग्स खत्म हो गई तो बच्चों की
1: पढ़ाई. हमने पूरा विजुलाइज भी कर लिया होता है. हर बार कोई सिचुएशन आते हैं हम पहले फ्यूचर ही विजुलाइज करते हैं. तो समवेयर वी रियली नीड टू चेक. शिवानी, थैंक यू सो मच. और अगर आपके पास कोई बात, कोई सवाल है, या तो फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 01242667000, 9999344555, 9999344666, 9873666555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवीकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही. लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हमें समझ में आई है कि जिस पर हमारा फ्यूचर डिपेंड कर सकता है कि मेरा आज कैसा होगा. स्टॉप थिंकिंग अबाउट फ्यूचर. एक्चुअली वो प्लानिंग करना एक दिन के लिए बंद करके देखें, फिर अपना अनुभव हमें भी लिखें और खुद लोगों के साथ भी शेयर करें और खुद समझें भी. आज इतना ही, आगे मुलाकात होगी. ओम शांति.

0: बचपन में विनोबा खूब बीमार रहते थे। माँ हमेशा कहती थी कि हमारा विनया 6 महीने निकाले तो बहुत, कुछ न कुछ बीमारी होती ही रहती थी, इसीलिए डॉक्टरी दवा भी कुछ न कुछ चला करती थी। विनया को ये दवा पिलाते समय माँ रोज उससे ये श्लोक बुलवाती, औषध जानवी तोय वैद्यो नारायणो हरि। विनु उस प्रकार बोलता जाता। एक दिन इसका अर्थ उसके ध्यान में आया तो माँ से कहने लगा,
1: अरे माँ, इसमें तो भगवान को वैद्य और गंगा जल को औषध समझने के लिए कहा है।
2: तेरा वह अर्थ तो सही है, परंतु उसके लिए वैसी योग्यता चाहिए। तेरे लिए उसका अर्थ अलग है।
1: वो कौन सा है?
2: डॉक्टर को भगवान समझ और वह जो कुछ औषध दे उसे गंगा जल समझ।
1: परंतु माँ, ये 2 भूमिकाएं हैं, दोनों भूमिकाओं में, दोनों बातों में तथ्य है। माँ, तूने ये कांच की चूड़ियां पहन रखी हैं, ये सौभाग्य का चिन्ह है या दुर्भाग्य का? तेरा सौभाग्य तो तेरे हाथ में नहीं, उस कांच के कारखाने के हाथ में है। ये सौभाग्य है या दुर्भाग्य?
2: अरे बेटा, कांच की चूड़ियां पहनने के पीछे भी एक दृष्टि है। कांच की चूड़ियां पहनी तो सावधानी से ख्याल रखते हुए काम करना होता है, फिर धड़ाम धम काम नहीं कर सकते। जैसे जनेयू पहनने से रोज स्नान किया है या नहीं इसका पता चलता है। जनेयू गंदा हो तो स्नान भी नाम का, वैसे ही यह बात है। कांच की चूड़ियां पहनने से काम में सावधानी और कुशलता आती है।

0: घुमक्कड़ तो विनोबा बचपन से ही था। दिन भर भटकता रहता, रात में घूम घाम कर घर आता तो अंधेरा हो जाता। घर के सभी लोग खा पीकर निश्चिंत हो जाते थे, सिर्फ माँ बेटे की राह देखती बैठती थी। वो वीना को खिलाकर तब खुद खाती, ये रोज का कार्यक्रम बन गया था। एक दिन विनोबा को आने में बहुत देर हो गई, देखा तो माँ बिना खाए बैठी है, उससे रहा नहीं गया।
1: माँ मुझे बहुत देर हो जाती है, तू पहले खा क्यों नहीं लेती?
2: तू उस बात को नहीं समझ पाएगा बेटा, जब तू माँ बनेगा तब इस बात को समझ सकेगा।

0: भविष्य ने विनोबा को भी माँ बनाया। नन्हे मुन्ने बच्चों की माँ नहीं, 30 साल की डबल ग्रेजुएट एक नौजवान लड़की की माँ। और तब कभी न देखी कभी न सुनी विनोबा लीला देखने को मिली। बहुत बार सवाल उठता कि क्या ये वही बाबा है, फिर याद आ जाता कि ये तो माँ बना हुआ बाबा है। सारी मातृलीला उसने बचपन से ही अपने माँ से सीखी है। विनोबा की माँ का मायका था कर्नाटक में तुंगभद्रा के किनारे। 4 साल की उम्र में पहली बार माँ विनया को नाना के घर ले गई। इतनी छोटी उम्र में भी माँ विनया को नदी पर स्नान के लिए ले जाती थी। कड़ी ठंड के दिन हो तो भी माँ बेटे को साथ ले जाने का आग्रह रखती थी। पांव में जूते भी नहीं रहते थे। जब ठंडी असह्य हो जाती तब विनू को स्नान से मुक्ति मिल जाती थी। परंतु माँ का स्नान तो अटल था, परंतु बच्ची के मन का समाधान कराने के लिए वे कहती,
1: खूब ठंडी है, नहाने की जरूरत नहीं बेटा, थोड़ा सा आचमन कर ले। कहावत है, गंगा स्नानम तुंगा पानम। जो फल गंगा स्नान से मिलता है वही फल तुंगा के पान से मिलता है।
0: बचपन से तपस्या, त्याग और भक्ति का भोजन बच्चों को मिला और उसमें से पोषण पाकर सन्यासी, भक्त और सेवक का एक अनोखा व्यक्तिमत्व जगत को मिला। जीवन के अनमोल पाठ पढ़ाने वाली माँ को याद कर वे कहते हैं,
2: जन्मदात्री मेरी माँ ने मुझे बचपन से त्याग और तपस्या सिखाई, बांट कर खाना सिखाया। वैसी ही मेरी दूसरी माता वेद माता ने मंत्र दिया। दोनों माताओं के मुझ पर अनंत उपकार।
0: विनोबा को बचपन से ही धर्म ग्रंथ पढ़ने का शौक था। कुछ न कुछ पढ़ते ही रहते थे। एक दिन भक्त विजय पढ़ते पढ़ते उन्होंने माँ से कहा,
2: माँ ऐसे संत तो केवल प्राचीन काल में ही हो सकते थे।
1: बेटा संत तो आज भी है, बस हम उनको जानते नहीं है। यदि संत सज्जन ना होते तो फिर यह पृथ्वी टिकती किसके तप के आधार पर।
0: कितना गहरा विश्वास। खास पढ़ी लिखी न होने पर भी अपनी अंतर विद्या से माँ बच्ची को अमूल्य ज्ञान परोसा करती थी। यो भी माँ बालक की प्रथम गुरु होती है, परंतु इस मामले में तो परस्पर आदान प्रदान चलता था। माँ को किसी विषय में समाधान न होता तो वो तुरंत विनया से पूछकर समाधान पा लेती थी। माँ को इतना भी पढ़ना नहीं आता था, कभी कभी विनया उसे पढ़ना भी सिखाता था। एक दिन सुबह विनोबा जी ऊपर के कमरे में वर्ड्सवर्थ की एक कविता ऊंची आवाज में पढ़ रहे थे। माँ ने सुना तो बोली,
1: विनया ये क्या सुबह सुबह यस फस।
2: माँ ये अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ की अप्रतिम कविता है और मैं एक अच्छी किताब ही पढ़ रहा था।
0: जब विनोबा ने माँ को कविता का अर्थ समझाया और ये विश्वास दिलाया कि वे एक अच्छी किताब ही पढ़ रहे थे, तब वो बोली,
1: तो गलत किताब पढ़ेगा नहीं, यह मुझे पता है। और अंग्रेजी में भी अच्छी विचारों वाली किताबें होगी। अंग्रेजी पढ़ना गलत नहीं, परंतु तड़के संस्कृत पढ़ना चाहिए।
0: संस्कृत सीखने की प्रेरणा विनोबा जी को माँ से मिली। विनोबा जी को हाई स्कूल में प्रवेश लेना था। घर पर चर्चा हुई कि सेकंड लैंग्वेज के रूप में कौन सी भाषा ली जाए। फ्रेंच ली जाए, ऐसा पिता का कहना था और उनकी बात को विनोबा ने मान भी लिया। मगर माँ की रुचि उसमें नहीं थी। उसने बेटे और पिता की बातें सुन ली थी। शाम को जब विनोबा स्कूल से लौटकर जब भोजन करने बैठा तो माँ उसके पास आकर बैठी और पूछा,
1: तूने कौन सा विषय चुना।
2: मैंने फ्रेंच विषय चुना।
1: ब्राह्मण का बेटा संस्कृत नहीं सीखेगा।
2: ब्राह्मण का बेटा है तो संस्कृत सीखेगा ही, परंतु संस्कृत स्कूल जाके सीखे ये जरूरी नहीं।

0: माँ के उन शब्दों का इतना गहरा असर पड़ा जिसका वर्णन विनोबा भी कर नहीं सकते। आगे उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, उसके अलावा 15-20 भाषाएं भी सीखी। लगभग 1915 की बात है, बड़ौदा में एक प्रवचनकर्ता आए थे। वे गीता का प्रवचन करते थे। विनोबा जी की माँ रोज रात उनका प्रवचन सुनने जाती थी। 2-4 दिनों बाद वो विनोबा से बोली,
1: विनिया, वो गीता पर बोलते हैं और मुझे कुछ भी नहीं समझता, मुझे एक मराठी गीता की पुस्तक ला कर दे।
2: ये लो किताब गीता की जो मराठी में है।
1: अरे ये तो गद्य है, मुझे पद्य वाली ला दो।
0: गद्य की अपेक्षा पद्य शायद पढ़ने में आसान होता है। उस समय वामन पंडित की समश्लो की गीता, यही पद्य अनुवाद उपलब्ध था। वो किताब विनोबा ने माँ को ला कर दी। कुछ दिनों बाद वो बोली,
1: विनिया ये कठिन है, समझ में नहीं आती।
2: तो क्या करें, इससे अधिक सरल अनुवाद मिला ही नहीं।
1: तू ही क्यों नहीं कर सकता मेरे लिए गीता का मराठी अनुवाद, तू ये कर सकता है।
0: उसका बेटा गीता का पद्य में अनुवाद कर सकेगा, ऐसा विश्वास उस माँ को कहाँ से आया ये भगवान ही जाने। शायद विनोबा को कविता लिख लिख कर अग्नि को समर्पित करते हुए देख लिया होगा। जो भी हो, परंतु उस विश्वास ने विनोबा में अटूट शक्ति भर दी। माँ की मृत्यु के कुछ साल बाद विनोबा को गीता का मराठी पद्यानुवाद करने की प्रेरणा हुई और जेल में उन्होंने वो अनुवाद कर डाला और उस अनुवाद को उन्होंने गीताई यानी गीता आई, गीता माता, मराठी में माँ को आई कहते हैं, ये नाम दिया। गीताई में आई माँ का सर्वोत्तम स्मारक रचा गया है। विनोबा कहते हैं,
2: जब मैं गीता का थोड़ा बहुत अर्थ समझने लगा तब मेरी माँ चल बसी।

0: उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे गीता माता की गोद में सौंप कर गई है। माँ गीते, मैं आज तक तेरे ही दूध से पला हूं, आगे भी मुझे तेरा ही सहारा है।
1: विनोबा के व्यक्तित्व में वैराग्य वृत्ति उनकी अपनी संपत्ति है। वैसे उनकी मां में वैराग्य और भक्ति भरी पड़ी थी। 30 पर भी ऐसा लगता है कि विनोबा पूर्व जन्म की कमाई करके लाए हैं। शंकराचार्य, ज्ञानदेव उनकी प्रेरणा और श्रद्धा के केंद्र में रहे हैं। बेशक ब्रह्मचर्य और वैराग्य के मूल को सिंचित करने वाली माँ तो थी ही, परिणाम स्वरूप बचपन से ही इस दिशा के उनके विचार स्पष्ट और मजबूत रहे। महाराष्ट्रियों में एक रिवाज है कि यज्ञोपवीत संस्कार के समय जब लड़का भाग जाता है तो मामा अपने भांजे को मनाता है कि भागो मत, मैं तुम्हें अपनी लड़की ब्याह दूंगा। इस रिवाज का विरोध करते हुए 12 साल की उम्र में ही विनोबा ने आजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ले ली। पितराई भाई महादेव भी इस व्रत का साथी था। तब से ब्रह्मचर्य वाला कठोर जीवन विनोबा का शुरू हो गया था। माँ विनया का बिस्तर बिछाकर रखती तो सोते समय विनया उसे हटाकर कंबल बिछाकर सो जाता।
2: तुमने गद्दी क्यों हटा ली?
0: ब्रह्मचारी को नरम गद्दी पर नहीं सोना चाहिए, ऐसा नियम है।
2: विनया, ईश्वर ने मुझे स्त्री बनाया है, इसलिए मैं मजबूर हूँ। यदि मुझे पुरुष बनाया होता तो मैं तुझे दिखाती कि वैराग्य क्या चीज है।
0: माँ की वृत्तियां देखकर मुझे तनिक भी संदेह नहीं होता कि वह वैसा न कर पाती।
1: अपने बच्चों की शादी हो, लड़के के भी पुत्र पौत्रादि को देखकर देह छूटे, ऐसी वासना कई माता पिताओं की रहती थी। परंतु ये माँ तो कोई न्यारी ही थी। वो अपने पुत्रों को सिखाती थी,
2: विन्या, गृहस्थाश्रम का पालन अगर सही तरीके से अच्छी तरह से किया गया तो एक पीढ़ी का उद्धार होता है, परंतु ब्रह्मचर्य का यदि उत्तम पालन किया जाए तो 42 पीढ़ियों का उद्धार होता है।
1: विनोबा की माँ की उम्र 36 वर्ष की थी। तब से उनके माता पिता ने माँ की प्रेरणा से ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। ये बात माँ के जाने के बाद पिता ने विनोबा को बताई। विनोबा कमाल के आलसी थे। वे कहते,
0: मैं पहले से ही बहुत आलसी हूँ। शादी न करने के पीछे ब्रह्मचर्य का विचार तो है ही, उसके साथ साथ गृहस्थी का संसार खड़ा करने में मुझे बड़ा आलस भी लगता है।
1: जब वे शाला में पढ़ते थे तब गर्मी के दिनों में माँ बड़ौदा की गर्मी सहन न कर पाने से कोंकण चली जाती थी। बच्चे सब पढ़ाई के लिए बड़ौदा में ही बने रहते थे। माँ जाते समय विनय से कह जाती थी,
2: देख बेटे, इस अलमारी में 5 रुपए रख जाती हूँ, आम के मौसम में आम खरीदना और खूब खाना।
1: छुट्टी पूरी होने पर माँ लौटती तो घर की सफाई करते समय उस अलमारी में देखती तो वे 5 रुपए वहीं के वहीं धरे हैं। माँ पूछती,
2: क्यों रे विन्या, तूने आम खाए ही नहीं क्या?
0: अरे माँ, बाजार में जाए कौन, आम खरीदे कौन और घर पर लाकर खाए कौन?
2: विन्या, मैं मंदिर जा रही हूँ, पिंजड़े में खाना पड़ा है, भूख लगे तो खा लेना।
1: माँ मंदिर से वापस आकर देखती कि विन्या पढ़ने में ही तन्मय है तो पूछती,
2: क्यों बेटा, कुछ खाया तूने?
0: अरे माँ, अलमारी खोले कौन, थाली में निकाले कौन और खाए कौन?
1: शंकराचार्य का एक श्लोक है कि अनिवार्य कर्म ही करना और सो भी अनासक्ति के पथ्य के साथ। विनोबा ने बचपन से ही गुरु के इस आदेश का पालन करना शुरू कर दिया था। एक बार विनोबा के पिता बड़ौदा से दीपावली की छुट्टियों में घर पर आने वाले थे। माँ ने अपने बच्चों को पहले से ही कह रखा था कि तुम्हारे बाबा आएंगे तो तुम्हारे लिए कुछ मिठाइयाँ लाएंगे। जब पिताजी आए तो उनके हाथों में बच्चों ने लाल पीले रंग का चौकोना पैकेट देखा। विनोबा को लगा कि उसमें बर्फी होगी। इतने में पिताजी ने ही ऊपर का कागज निकाल दिया और कहा,
3: लो बेटा, तुम्हारे लिए है ये बाल रामायण, बाल महाभारत और बाल भागवत की मिठाइयाँ।
0: देखो माँ, बाबा हमारे लिए मिठाइयाँ लाए हैं।
2: बेटा, इससे अच्छी मिठाइयां और क्या होगी।

0: उन मिठाइयों का चस्का विनोबा को बचपन से जो लगा है आज तक छूटा नहीं। पदयात्रा के अत्यंत व्यस्त जीवन क्रम में भी उनका पुस्तक पठन जारी ही रहा। इहलोक में रहते हुए भी उन्होंने अपना एक लोक बना लिया है, जहां दुनिया भर के नामी अनामी संत महानुभावों का दरबार लगा रहता है। नरहरि भावे, विनोबा के बाबा का जन्म 1875 ईस्वी सन में हुआ था। उनके व्यक्तित्व में अनेक विरल सद्गुणों का सुभग समुच्चय हुआ था। वैज्ञानिक तो वे थे ही, संगीतज्ञ भी थे। कला और विज्ञान के दो पंखों से उन्होंने जीवनाकाश में विहार किया। वैज्ञानिक होने के नाते सिर्फ अपने कमरे की प्रयोगशाला में उनके प्रत्यक्ष प्रयोग चलते थे। वैज्ञानिक ढंग से खाना पीना रहना सोचना और जीना, ये उनकी जीवन पद्धति थी। उनके जीवन में सादगी थी, संयम था, नियमितता थी, सातत्य था। वैज्ञानिक पिता बच्चों को समझाते थे,
1: अरे मुंह में कौर रखते हो तो वह मीठा लगता है, फिर उसको अंदर जल्दी धकेल देने में उतावली क्यों करते हो, पेट में वह थोड़े ही मीठा लगने वाला है। स्वाद का स्थान तो जीभ है, मुंह है, तो थोड़ी देर खाना वही रहने दो, चबा चबा कर उसका स्वाद बराबर लो, फिर उसे पेट में जाने दो।
0: सचमुच में पिता का सारा वैज्ञानिक काम चलता। माँ जाने के बाद 30 साल वे जिए, उसमें उन्होंने आहार के अनेक प्रयोग किए। करीब 20 साल वे केवल दूध पर ही रहे, बीच बीच में सोयाबीन लेते थे। जब माँ का देहांत हुआ तब एक बार बालकोबाजी की इच्छा हुई कि पिताजी पर माँ की मृत्यु का क्या असर है पूछ ले, तो उन्होंने पूछा,
2: बाबा माँ गई तो उसका आप पर क्या असर हुआ?
1: तुम्हारी माँ गई तो मेरी तबीयत जरा ठीक रहती है, मैं संयम और विज्ञान से बरतने वाला आदमी हूँ। फिर भी एक समय का भोजन मैंने तुम्हारी माँ के हाथ में रखा था, वह जो खिलाती थी खा लेता था, अच्छा बुरा नहीं देखता था। परंतु अब वह गई तो मुझे जो चाहिए सो खा लेता हूँ।
0: इस प्रत्युत्तर को याद करके विनोबा गदगद होकर कहते हैं, कितने वैराग्य का उत्तर है। करीब करीब तुकाराम की भाषा है, बाई मेली मुक्त झाली देवा मला सोडवली, यानी पत्नी मरी तो वो भी मुक्त हुई, मुझे भी मुक्त किया।
3: पिताजी योगी थे, गणितज्ञ थे, शास्त्रज्ञ थे, वे 35 साल व्रतस्थ रहे तो सहज रहे ऐसा देखा, परंतु उसकी प्रेरणा उन्हें माँ से मिली। माँ के अस्पष्ट बोलने से ख्याल तो आ ही गया था, परंतु माँ के जाने के बाद बाबा ने खुद ये कहा।
0: विनोबा जी के पिताजी रसायन शास्त्री थे, वे रंग के विविध प्रयोग करते रहते, कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को रंगते और फिर कौन सा रंग कच्चा है, कौन सा पक्का, कौन सा रंग धूप में टिकेगा, कौन पानी में टिकेगा, कौन रंग दोनों में, इस तरह से अलग अलग प्रयोग करते रहते थे। उन छोटे छोटे टुकड़ों की उन्होंने एक पुस्तक भी तैयार की थी। एक बार माँ ने कहा,
4: जैसे छोटे छोटे टुकड़े रोज रंगते हो, उसके बजाय मेरी एक हाथ साड़ी रंग देते तो पहनने के काम आती।
1: यदि प्रयोग सफल हुआ तो इसमें एक नहीं अनेक साड़ियां मिलेगी, परंतु जब तक प्रयोग सफल नहीं हुआ तब तक तो टुकड़े ही हाथ में रहेंगे।
0: छोटे छोटे तौलिए पर अ से ज्ञ तक अक्षर घर में ही झांप कर वो बच्चों को देते थे, जिससे उनमें किताबें लपेटकर बच्चे स्कूल में जाए और नजरों के सामने अक्षर रहे तो आसानी से लिखा जाए। बड़ौदा में कपड़े की पहली मील शुरू हुई तो उनको बहुत आनंद हुआ। उस दिन घर आकर वे सबको इतने आनंद से खबर देने लगे कि माँ कहने लगी,
4: आज तो आपको बहुत आनंद हुआ होगा, इतना आनंद तो विनू के जन्म की वार्ता सुनकर भी नहीं हुआ होगा।
1: भारत का आधुनिकीकरण होना चाहिए, मशीनरी आनी चाहिए।
0: जब गांधी जी ने ग्रामोद्योग संघ शुरू किया और हाथ से कागज बनाने का उद्योग शुरू किया, ये सन 1934 की बात है, पिताजी ने विनोबा को एक पत्र लिखा था। 10-12 पन्नों का वो पत्र था, कागज के रंग में कुछ नीलापन था। पत्र में लिखा था,
1: इस पत्र की सब क्रियाएं मेरे हाथ से हुई है, कागज मैंने बनाया, जो स्याही इस्तेमाल की है वह मैंने बनाई, जिस कलम से पत्र लिखा वह कलम मैंने बनाई, और पत्र भी मैंने खुद लिखा है, कागज में कुछ नीलापन रह गया है, वह निकाल सकते हैं, परंतु उसे निकालने के लिए द्रव्य बाहर से मंगवाना पड़ेगा, इसलिए वैसा ही रहने दिया। नीलापन
3: भी बाबा का वो पत्र याद है, परिपूर्ण स्वावलंबन का द्योतक वह पत्र था, परंतु दुर्भाग्य से वो पत्र अब कहीं नहीं मिलता। मुझे वो संभाल कर रखना चाहिए था, लेकिन मैंने अपने नाम आए कोई भी पत्र संभाल कर नहीं रखे, उसी में शायद वो भी गया।
0: विनोबा के पिता की समय निष्ठा अत्यंत दृढ़ थी। बड़ौदा में उनके एक मित्र थे जिनके घर रोज शाम को ये शतरंज खेलने जाया करते थे। रोज आधा घंटा शतरंज खेलना, उससे कम भी नहीं और अधिक भी नहीं। बीच में माँ कुछ दिन अपने मायके गई तो बच्चे उस मित्र के घर पर रहते थे। उस वक्त पिताजी अपने घर पर रहकर रोज शाम को नियमानुसार खेलने आते थे। 7 बजे उठ जाने का उनका नियम था। सामने घड़ी रखकर खेलते थे। कभी कभी 7 बजते और खेल अधूरा रह जाता। पिताजी उठ खड़े हो जाते तो मित्र कहते,
5: बैठिए ना, अभी तो न कोई जीता न कोई हारा, 5 मिनट में पूरा हो जाएगा।
1: खेल तो कल भी खत्म हो सकता है, इसको ऐसा ही छोड़ दो, कल यहीं से शुरू करेंगे।
0: उनको कोई मना नहीं कर सकता था, ये उनका नित्य का नियम था, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बात का जिक्र करते हुए उनके मित्र बहुत बार विनोबा से कहते, देखो ये कुर्सी तुम्हारे पिता की है, हमेशा इसी कुर्सी पर वो बैठते थे। विनोबा भी शतरंज खेलने में प्रवीण थे, पिताजी से भी अच्छा वे खेल लेते थे। परंतु एक रात को स्वप्न में शतरंज का खेल आया तो दूसरे ही दिन से उन्होंने शतरंज खेलना छोड़ दिया। इस पर विनोबा ने कहा,
3: खेल तो मैं विनोद के लिए खेलता हूँ, परंतु वो अगर स्वप्न में आकर मुझ पर सवार होकर अपनी सत्ता जमाने लगे, ये कैसे हो सकता है।

0: अभी तक आपने जाना कि युवा विवेकानंद कई तरह से धार्मिक तथा आध्यात्मिक मतवादों से परिचित होकर विचलित हो गए। सत्य क्या है, इसकी खोज में वे भटकते रहे। अंततः डॉक्टर रामचंद्र दत्त के कहने पर दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण ठाकुर से मिलने गए। वहां उन्होंने ठाकुर के कहने पर गाने भी गाए। इस ऐतिहासिक मुलाकात से नरेंद्रनाथ के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। इस मुलाकात का वर्णन उन्होंने खुद इस तरह किया है।
1: गाना तो मैंने गाया, उसके बाद ही श्री राम कृष्ण देव एकाएक उठकर मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में उत्तर की ओर बरामदे में मुझे खींच ले गए। उस समय शीतकाल था। उत्तरी हवा रोकने के लिए बरामदे के खंभों के बीचों बीच टट्टे घिरे हुए थे, इसलिए वहां भीतर जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर देने से कमरे के भीतर या बाहर के किसी व्यक्ति को देखा नहीं जा सकता था। बरामदे में प्रविष्ट होकर श्री रामकृष्ण देव द्वारा दरवाजा बंद कर देने पर मैंने सोचा, संभवतः एकांत में मुझे उपदेश देंगे। परंतु उन्होंने जो कुछ कहा और किया वो कल्पनातीत है। एकाएक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनके नेत्रों से आनंद अश्रु की धारा बहने लगी और पूर्व परिचित की तरह मुझे परम स्नेह से संबोधित करते हुए कहने लगे, तू इतने दिनों बाद आया, मैं तेरे लिए किस प्रकार प्रतीक्षा कर रहा था तू सोच भी नहीं सकता। विषयी मनुष्यों के व्यर्थ के प्रसंग सुनते सुनते मेरे कान जले जा रहे हैं। मन की बात किसी से न कह सकने के कारण मेरा पेट फूलता जा रहा है। आदि आदि वे कितनी ही बातें कहने लगे और रोने लगे। दूसरे ही क्षण मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और देवता की तरह मेरे प्रति सम्मान दिखाकर कहने लगे, मैं जानता हूं प्रभु, आप वही पुरातन ऋषि नर रूपी नारायण हैं। जीवों की दुर्गति दूर करने के लिए आप पुनः संसार में अवतीर्ण हुए हैं। मैं तो उनके इस प्रकार के आचरण से एकदम अवाक और स्तंभित रह गया। मन में सोचने लगा, मैं किसे देखने आया हूं, ये तो एकदम उन्माद हैं। मैं तो विश्वनाथ दत्त का पुत्र हूं, मुझसे ऐसी बातचीत। जो भी हो, मैं चुप रह गया। अपूर्व पागल, जो मन में आया कहते चले गए। थोड़ी देर बाद मुझे वहीं ठहरने के लिए कहकर वे कमरे में चले गए और मक्खन मिश्री तथा कुछ मिठाई लाकर अपने हाथ से मुझे खिलाने लगे। मैं कहने लगा, मुझे मिठाइयां दे दीजिए, साथियों के साथ खाऊंगा। परंतु उन्होंने मुझे सब कुछ खिलाकर ही छोड़ा। इसके बाद मेरा हाथ पकड़कर उन्होंने कहा, बोल, तू जल्दी ही एक दिन मेरे पास अकेला आएगा तो? उनके इस आग्रहपूर्ण अनुरोध को टाल न सकने के कारण लाचार होकर आऊंगा कह दिया और उनके साथ साथ कमरे में आकर अपने साथियों के साथ बैठ गया।
2: कमरे में श्री रामकृष्ण के समीप कई लोग बैठे थे। उन्होंने कहा,
3: देखो, देवी सरस्वती के ज्ञान लोक से नरेंद्र कैसा चमक रहा है। अच्छा नरेंद्र, बता तो, क्या तुझे सोने से पहले ज्योतिपुंज दिखाई पड़ता है?
1: जी हाँ।
3: वाह, सब कुछ ठीक ठाक मिलान होता जा रहा है। अरे ये तो ध्यान से धैर्य, जन्म से ही ध्यान से धैर्य।
0: नरेंद्र बैठे बैठे सब कुछ देखते रहे। उन्होंने देखा कि ठाकुर की चाल ढाल, बातचीत और दूसरों से व्यवहार में उन्माद जैसा कुछ भी नहीं है, वरन उनकी सत्कथा एवं भाव समाधि को देखकर नरेंद्र में यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि ये सचमुच ही ईश्वर के लिए सर्वस्व त्यागी है तथा ये मुख से जो कुछ कहते हैं उसका स्वयं अनुष्ठान भी करते हैं। ये अत्यंत सहज सरल भाषा में उच्च आध्यात्मिक बातें करते हैं। इसी से नरेंद्र को लगा ये संभवतः सचमुच एक उच्च सत्य दृष्टा महापुरुष है। अतएव जो प्रश्न आज तक वे धर्माचार्यों से पूछते आए हैं वही प्रश्न लेकर उनकी ओर आगे बढ़े और जिज्ञासा प्रस्तुत की।
1: महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है?
3: हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक जैसे तुम लोगों को देखता हूं, बल्कि इससे भी और अधिक स्पष्टता से। तुम लोगों को जैसे देख रहा हूं, तुम लोगों से जैसे बातचीत कर रहा हूं, वैसे ही ईश्वर को भी देखा जाता है और उनसे बात की जा सकती है। परंतु वैसा कौन चाहता है? लोग स्त्री पुत्र के शोक में घंटों आंसू बहाते हैं, विषय और धन के लिए तरसते रहते हैं, परंतु ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ ये कहकर कौन रोता है? मैं उन्हें पा नहीं सका, ऐसा कहकर कौन व्याकुल होकर उन्हें पुकारता है? उन्हें मैं पा न सका तो वे अवश्य ही दर्शन देते हैं।
1: उनके श्रीमुख से ऐसी बात जानकर मुझे लगा कि अन्य धर्म प्रचारकों की तरह वे कल्पना या रूपक का सहारा लेकर व्याख्यान नहीं देते, यथार्थ में ही सब कुछ छोड़कर संपूर्ण मन से ईश्वर को पुकार कर जो कुछ प्रत्यक्ष अनुभव किया वही कर रहे हैं। पागल होने पर भी ईश्वर के लिए वैसा त्याग संसार में विरले मनुष्य ही कर सकते हैं। उन्माद होने पर भी ये महापुरुष पावन, पवित्र और त्यागी हैं। इसी कारण मानव हृदय की श्रद्धा, पूजा और सम्मान पाने के ये यथार्थ अधिकारी हैं।
0: इस प्रकार सोचते हुए उस दिन ठाकुर को प्रणाम कर उनसे विदा लेकर वे कलकत्ता लौट आए।
2: इस पहली मुलाकात के बाद लगभग महीने भर तक नरेंद्र दक्षिणेश्वर नहीं गए, पर बाद में उन्हें अपना फिर वहां जाने का वादा याद आया और इस बार वे अकेले कलकत्ते से दक्षिणेश्वर तक पैदल ही चले गए।
1: दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी कलकत्ते से इतनी दूर होगी ये पहले एक बार गाड़ी से जाकर मैं समझ नहीं सका था। वराह नगर से दाशरथी, सान्याल, सातकड़ी, लाहड़ी आदि मित्रों के घर तो मैं कभी जाया करता था। मैंने सोचा था कि रानी रासमणि का बाग उन मित्रों के घर के समीप ही कहीं होगा, परंतु जितना ही चलने लगा रास्ता समाप्त ही नहीं होता था। अंत तो गत्वा पूछते पूछते किसी तरह दक्षिणेश्वर पहुंच गया और एकदम श्री रामकृष्ण के कमरे में उपस्थित हो गया और देखा वे पहले की तरह छोटी चौकी पर अकेले अपने ही भाव में विभोर बैठे हैं। पास में कोई नहीं था। मुझे देखते ही आनंद से बुलाकर अपने पास बिठाया। बैठने के बाद ही मैंने देखा न जाने किस प्रकार के भाव में वे तन्मय हो गए हैं और अस्पष्ट स्वर से कुछ कहते हुए स्थिर दृष्टि से मेरी ओर देखकर धीरे धीरे सरकते आ रहे हैं। मैंने सोचा संभवतः ये पागल पहले दिन की तरह फिर कोई पागलपन कर बैठेगा। ये सोच ही रहा था कि उन्होंने एकाएक मेरे पास आकर अपना दाहिना पैर मेरे अंग पर संस्थापित कर दिया और उसके स्पर्श से क्षण भर में मेरे भीतर एक अपूर्व उपलब्धि होने लगी। आंखें खोलकर मैं देखने लगा कि घर की दीवारों के साथ सारी चीजें घूमती हुई कहीं विलीन होती जा रही हैं, और सारे ब्रह्मांड के साथ मेरा शुद्र अहम भाव सर्वव्यापक महाशून्य में विलीन होता जा रहा है। उस समय भय से मैं घबरा उठा, सोचने लगा अहम भाव का नाश ही तो इस बात का संकेत है कि मृत्यु सामने बहुत समीप आ गई है। अपने को संभाल न सकने के कारण मैं चिल्ला उठा, अजी अजी आपने मेरी ये कैसी अवस्था कर डाली, मेरे तो मां बाप हैं। मेरी बात सुनकर वो अद्भुत पागल खिलखिलाकर हंस पड़ा और मेरा हाथ पकड़कर छाती से स्पर्श करते हुए कहा,
3: अच्छा तो फिर अभी रहने दो, एकदम ही होने की कोई जरूरत नहीं, समय आने पर अवश्य होगा, समय आने पर होगा।
1: आश्चर्य की बात यह है कि उनके स्पर्श से और ये बात कहते ही मेरे अपूर्व दर्शन विलुप्त हो गए, मैं प्रकृतिस्थ हो गया और कमरे के भीतर तथा बाहर सभी पदार्थों को पहले की तरह अवस्थित देखने लगा। इस बात को कहने में तो इतना समय लगा, पर असल में तो वो घटना बहुत ही थोड़े समय में हो गई और उससे मेरे मन में एक युगांतर उपस्थित हुआ। स्तब्ध होकर मैं सोचने लगा, ये क्या हुआ? एक अद्भुत पुरुष के प्रभाव से भाव एकाएक उपस्थित हुआ और लुप्त भी हो गया। पुस्तक में मैस्मरिज्म यानी मोहिनी इच्छा शक्ति संचारण और हिप्नोटिज्म यानी सम्मोहन विद्या के संबंध में पढ़ा था। सोचने लगा कि ये भी कुछ वैसा ही होगा, किंतु ये सिद्धांत चित्त में ठहर न सका, क्योंकि दुर्बल मन के ऊपर ही प्रभाव डालकर प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न व्यक्ति वैसी अवस्था ला देते हैं, परंतु मैं तो वैसा नहीं हूं, बल्कि अब तक अपने को विशेष बुद्धिमान और मानसिक शक्ति संपन्न मानता आया हूं। विशेष गुणयुक्त पुरुष के संग से साधारण व्यक्ति जिस प्रकार मोहित हो जाते हैं और उनके हाथ के खिलौने बन जाते हैं, मैं तो उन्हें देखकर वैसा नहीं हुआ हूं, बल्कि आरंभ से ही मैंने इन्हें आधा पागल समझ रखा है। अतः मेरे भीतर एकाएक इस प्रकार का भाव आने के कारण क्या है? मैं यही सब सोचता विचारता रहा, पर कुछ निश्चय नहीं कर सका। हृदय में कुछ हलचल सी मच गई। महाकवि शेक्सपियर की बात याद आई, पृथ्वी और स्वर्ग में ऐसे अनेक तत्व हैं जिनके रहस्य भेद की मनुष्य बुद्धि द्वारा रचित दर्शन शास्त्र कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने सोचा ये भी वैसा ही कुछ होगा। सोच विचार कर निर्णय किया कि इनकी बात अभी समझ में नहीं आएगी, और दृढ़ संकल्प कर लिया कि ये अद्भुत पागल अपना प्रभाव डालकर भविष्य में कभी वशीभूत करके वैसा भावांतर उपस्थित न कर दे। फिर ये सोचने लगा कि इच्छा मात्र से ये पुरुष यदि मेरे जैसे प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न चित्त के दृढ़ संस्कार युक्त गठन को इस तरह तोड़ फोड़ कर मिट्टी के लांदे की तरह अपने भाव में ढाल सकते हैं, तो उन्हें पागल कैसे समझूं? किंतु प्रथम दर्शन के दिन मुझे एकांत में ले जाकर उन्होंने जिस तरह संबोधित करते हुए बातें की थी, उससे इन्हें पागल के अतिरिक्त तो और मान सकता हूं। अतः अभी जो उपलब्धियां हुई उनका कोई कारण मैं नहीं पा सका, और इस शिशु सदृश पवित्र तथा सरल पुरुष के संबंध में कुछ स्थिर निश्चय ही कर पाया। बुद्धि का उन्मेष होने के अनंतर खोज और तर्क युक्ति की सहायता से प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति के संबंध में एक मतामत स्थिर किए बिना मैं कभी निश्चित नहीं हो सका। उसी स्वभाव में आज एक प्रचंड आघात प्राप्त हुआ है। इससे हृदय में वेदना उत्पन्न हुई। फलस्वरूप मन में पुनः प्रबल संकल्प का उदय हुआ, जैसे भी हो सके इस अद्भुत पुरुष के स्वभाव और शक्ति की बात अवश्य ही समझनी होगी। उस दिन उस प्रकार की विविध चिंताओं एवं संकल्पों से मेरा समय बीतने लगा, परंतु श्री राम कृष्ण देव उस घटना के बाद मानो एक दूसरे ही व्यक्ति बन गए और पहले दिन के समान अनेक प्रकार से मुझे प्रेम पूर्वक खिलाने तथा सभी विषयों में पूर्व परिचित की तरह आचरण करने लगे। अत्यंत प्रिय आत्मीय अथवा घनिष्ठ मित्र को बहुत दिनों के बाद सामने पाने पर लोगों में जिस प्रकार का भाव होता है, मेरे साथ भी उन्होंने वैसा ही व्यवहार किया था। खिलाकर, बातचीत कर, प्यार और हास परिहास करके भी उन्हें मानो तृप्ति नहीं हो रही थी। वैसे उनके प्यार तथा व्यवहार का कारण न ढूंढ पाने पर मैं और भी सोचने लगा। क्रमशः संध्या होते देखकर मैंने उस दिन उनसे विदा लेनी चाही, परंतु उससे वे बहुत ही अप्रसन्न होकर बोले फिर शीघ्र ही आएगा तो। लाचार होकर मुझे पहले दिन की तरह वचन देकर ही लौटना पड़ा।
0: इस घटना के हफ्ते भर बाद नरेंद्र एक बार फिर दक्षिणेश्वर गए। श्री रामकृष्ण के संबंध में संदेह आदि के निराकरण करने के लिए वे अधीर हो उठे थे। उस दिन भी ठाकुर ने नरेंद्र के साथ बगीचे में और गंगा तट पर कुछ समय टहल कर बातचीत की और लौटकर बैठक में बैठते ही समाधिस्थ हो गए। उसी समय अचानक रामकृष्ण देव ने समाधि से जागकर नरेंद्र के पास आकर उन्हें स्पर्श किया। तुरंत नरेंद्र जैसे बेसुध से हो गए। क्या घटित हुआ वे कुछ भी समझ नहीं पाए। चेतना लौटने के बाद उन्होंने देखा कि ठाकुर उनके वक्ष स्थल पर हाथ फेर रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं।
2: कई दिनों के बाद पूछने पर रामकृष्ण ने बताया था कि वे पहले से ही नरेंद्र के बारे में जानते थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि वे कब आएंगे। उस दिन उन्होंने नरेंद्र की अचेतन अवस्था में उससे पूछा था कि वो कौन है, कहां से आया है, क्यों आया है, कितने दिनों तक पृथ्वी पर रहेगा, और उसने सब बातों का सही सही जवाब दिया था।
0: इधर इन 3 दिनों की जानकारी के फलस्वरूप श्री रामकृष्ण के संबंध में नरेंद्रनाथ की धारणा में आमूल परिवर्तन हुआ था, ये कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने समझ लिया था कि श्री रामकृष्ण देव उन्माद पूर्ण नहीं बल्कि दैवी शक्ति से परिपूर्ण और ईश्वरानुभूति संपन्न एक महापुरुष हैं। भगवत इच्छा के साथ उनकी इच्छा पूर्णतया एक होने से वे दूसरों का महाकल्याण करने में समर्थ हैं। इस प्रकार के त्याग, पवित्रता, सरलता और करुणा से विभूषित व्यक्ति के हाथों में अपने जीवन के नियमन और परिचालन का दायित्व सौंप देने पर ही मनुष्य कृतार्थ होता है।
2: वस्तुतः अपनी प्रखर बुद्धिमता और ब्रह्म समाज के प्रभाव से यद्यपि वे गुरु के रूप में किसी को ग्रहण करने में विश्वास नहीं रखते थे, तथापि इन कुछ दिनों की जानकारी के फलस्वरूप उनके विचार में परिवर्तन आ गया। निश्चय ही उस समय भी वे बिना विचारे श्री रामकृष्ण देव की सभी बातों को मान लेने को तैयार नहीं थे और बिना परीक्षा लिए तथा स्वानुभाव के किसी बात को मान लेने में कोई तर्कसंगति उन्हें दिखाई नहीं पड़ती थी।
0: अब से श्री रामकृष्ण देव के प्रति उनके मन में एक श्रद्धापूर्ण प्रीति के प्रतिष्ठित रहने पर भी नरेंद्रनाथ की विचार शक्ति पूर्णतः जागृत ही रही। इन दोनों भावों के सम्मिलन एवं संघर्ष के द्वारा ही इसके बाद से इन दोनों अलौकिक महापुरुषों के मानवीय संबंध विकसित होने लगे। अर्थात यद्यपि नरेंद्र अब से श्री रामकृष्ण के ही हो गए, तथापि श्री रामकृष्ण देव ने उनकी निजी स्वतंत्रता पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। नरेंद्र की स्वतंत्रता अक्षुण रही। श्री रामकृष्ण के उपदेश विषयक अन्य बातों के संबंध में हम लोग नरेंद्रनाथ के श्रीमुख से ही सुनते हैं।
1: ठाकुर के संग में किस प्रकार आनंद से दिन बीतते थे, दूसरों को समझाना कठिन है। खेल, हंसी, विनोद आदि साधारण विषयों पर उन्होंने किस तरह निरंतर उच्च शिक्षा देकर अनजाने में हमारे आध्यात्मिक जीवन के गठन में सहायता दी थी। उस संबंध में आज सोचने पर हमें बहुत आश्चर्य होता है। बालक को सिखाते समय शक्तिशाली पहलवान जिस प्रकार अपना संयम रखकर बालक के अनुरूप शक्ति प्रकाशित कर कभी उसे बहुत प्रयत्न के द्वारा हराकर और कभी उससे स्वयं हारकर उसके मन में आत्मविश्वास उत्पन्न कर देता है, हमारे साथ व्यवहार करते हुए भी प्रायः वैसे ही भाव का अवलंबन करते थे। वे बिंदु के भीतर सदा सिंधु का दर्शन करते थे। उसी प्रकार हम लोगों के अंतर्निहित आध्यात्मिक भाव का बीज फल फूलों के रूप में परिणित होगा, इस बात को उसी समय वे भावमुख सदा हमारी प्रशंसा किया करते थे, उत्साह देते थे और किसी खास सावधानी के साथ हमारे प्रत्येक व्यवहार के प्रति ध्यान रखकर अनेक उपदेश देते हुए हमें संयत रखते थे। परंतु वे इतना ध्यान देकर हमें सदा नियमित रखते थे, इस बात को हम उस समय बिल्कुल ही नहीं समझ सकते थे। वही उनके शिक्षा प्रदान और जीवन गठन करने का अपूर्व कौशल था।
2: श्री रामकृष्ण देव परीक्षा लेते और शिक्षा देते, फिर नरेंद्रनाथ भी श्री गुरुदेव के वचन सुनकर शिक्षा ग्रहण करते। कारण, भगवान ने उन्हें अपूर्व प्रतिभा प्रदान की थी। नरेंद्रनाथ की अनुपम मेधा शक्ति श्री रामकृष्ण देव के स्नेहाकर्षण का अन्यतम प्रधान कारण थी। अन्य भक्तगण श्री रामकृष्ण देव के जिन अमूल्य उपदेशों को साधारण भाव से ग्रहण किया करते अथवा उनके प्रति अधिक ध्यान नहीं दिया करते, उनमें नरेंद्रनाथ की प्रतिभा अत्यंत गूढ़ और फलदायी मर्म का उद्घाटन किया करती थी।
0: सन 1884 ईस्वी में किसी समय श्री रामकृष्ण कमरे में भक्तों से घिरे बैठे हैं। श्रीयुत नरेंद्रनाथ भी वहां उपस्थित हैं। विविध वार्तालाप तथा बीच बीच में सरल हास प्रयास भी हो रहा है। प्रसंगवश वैष्णव धर्म की बात उठी। उस मत का सार मर्म सब लोगों को संक्षेप में समझाकर श्री रामकृष्ण देव ने कहा,
3: तीन बातों का पालन करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहने का उद्देश्य उस मत में है, नाम में रुचि, जीव के प्रति दया और वैष्णव पूजन। जो नाम है वही ईश्वर है। नाम नामी को अभिन्न जानकर निरंतर अनुराग के साथ नाम लेना चाहिए।
0: सब जीवों पर दया कहते ही श्री रामकृष्ण देव समाधिस्थ हो गए। कुछ क्षणों के अनंतर अर्धबाह्य दशा में अवस्थित होकर कहने लगे,
3: जीव पर दया, अरे कीटाणु, कीट होकर तू जीव पर दया करेगा? दया करने वाला तू कौन है? नहीं, जीव पर दया नहीं, शिव ज्ञान के साथ जीव की सेवा।
0: ये बातें सभी ने सुनी थी, किंतु उनकी भाव भंगिमा के पश्चात बाहर आकर नरेंद्रनाथ ने कहा, आज ठाकुर की बात से कैसा अद्भुत प्रकाश दिखाई पड़ा। जिस वेदांत ज्ञान को लोग शुष्क, कठोर और मतांतर रहे

नहीं देखा जाता, तब तक यथार्थ भक्ति या पराभक्ति लाभ करना साधक के लिए संभव नहीं होता, विशेष प्रकाश दिखाई पड़ेगा। भगवान ने यदि अवसर दिया तो आज जो जो सुना इस अद्भुत सत्य का संसार में सर्वत्र प्रचार करूंगा। पंडित मूर्ख, धनी निर्धन, ब्राह्मण चांडाल, सभी को सुनाकर मुग्ध करूंगा।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आलेख डॉक्टर पापिया दास गुप्ता, निर्देशन श्रुति धर्मेश, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

इतिहास के सफ़ों पे दर्ज हैं कहानियाँ कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: नमस्कार, मी शर्मिला राजाराम शिंदे आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे कैदी को देखा है जो एक बहुत मजबूत और घनी जेल में बंद हो, चारों तरफ लोहे की सलाखें हों, ऊंची दीवारें हों, तभी अचानक उस जेल का दरवाज़ा खुलता है, जेल की उन्हीं काली दीवारों से लिपट जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे तो इसी कोठरी के अंधेरे से प्यार है। आप ही बताइए, ऐसे कैदी की नासमझी पर कोई क्या कहे। कबीर साहब आज हमें समझा रहे हैं कि हमारी हालत भी ठीक वैसी ही है। गुरु हमें आज़ादी का रास्ता दिखाते हैं, बंधनों से मुक्त होने की चाबी देते हैं, लेकिन हमारा यह चंचल मन उन्हीं पुरानी आदतों और वासनाओं

की बेड़ियों को चूमता रहता है। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह दार्शनिक सूत्र। कोटि कर्म फल करे यहु मन विषयास्वादी, कोटि कर्म फल करें यहु मन विषयास्वादी, सतगुरु सबद न मानई जन्म गवाया बादी। कोटि कर्म फल करे

0: दिन। श्रोताओं, कबीर साहब मन के भटकाव और कर्मों के अंतहीन जाल को प्रकट करते हुए कहते हैं, कोटि कर्म फल मैं करें। यह जो हमारा मन है, यह क्षण भर भी शांत नहीं बैठता, यह लगातार कोटि यानी करोड़ों कर्म करता रहता है और फिर उन कर्मों के फल के अंतहीन चक्रव्यूह में खुद को फंसाता चलता है। यह ऐसा क्यों करता है? यहु मन विषया स्वादी, क्योंकि इस मन को संसार की विषया यानी विषय वासनाओं, लालच, ईर्ष्या और वासना के स्वादी यानी चस्के लग चुके हैं। वह उन्हीं क्षणिक सुखों में अपनी ऊर्जा नष्ट करता रहता है। इस भटकाव की सबसे दुखद विडंबना क्या है? अगली पंक्ति में कबीर कहते हैं, सतगुरु शब्द न मानी। जब इस भटके हुए मन को सही रास्ता दिखाने के लिए सतगुरु अपने ज्ञान का शब्द यानी अनमोल वचन सुनाते हैं, तो वह अहंकारी मन उसे मानी नहीं यानी अनसुना कर देता है, उसकी अवहेलना कर देता है। जन्म गवाया बादी, और इसका परिणाम यह होता है कि विधाता ने जो यह अनमोल मानव जन्म दिया था, उसे यह मन वासनाओं के पीछे भागते भागते बादी यानी पूरी तरह व्यर्थ और कौड़ियों के भाव गवा देता है। यह दोहा कर्म सिद्धांत और गुरु तत्व की अनिवार्यता का महासूत्र है। भारतीय दर्शन में माना गया है कि मनुष्य का हर विचार और हर कर्म एक नया बीज होता है, जिससे कर्म संस्कार बनते हैं। करोड़ों कर्मों का यह जाल इतना सघन है कि जीव इसमें युगों युगों तक भटकता रहता है। इस अभेद्य किले को तोड़ने की ताकत केवल सतगुरु के शब्द में ही होती है, जो विवेक की तलवार बनकर हमारे बंधनों को काटता है। कबीर समझा रहे हैं कि शाब्दिक ज्ञान या किताबों को पढ़ लेना गुरु शब्द को मानना नहीं है। गुरु शब्द को मानने का अर्थ है अपने आचरण को गुरु के वचनों के अनुकूल ढाल देना। जो मन गुरु के वचनों को अहंकार वश ठुकरा देता है, वह भवसागर के थपेड़ों में डूबने के लिए अभिशप्त हो जाता है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा शांत होकर विचार कीजिए कि हम सुबह से शाम तक कितने कर्म इकट्ठा कर रहे हैं, कितनी इच्छाएं, कितनी शिकायतें, कितनी चालाकियां हमारे भीतर 24 घंटे चलती रहती हैं। और जब कबीर जैसे संतों के वचन, सतगुरु के सूत्र हमारे कानों में पड़ते हैं, तो क्या हम सचमुच बदलते हैं, या फिर थोड़ी देर भावुक होकर हम वापस उसी विषय स्वाद के संसार में लौट आते हैं? आज कोशिश कीजिए इस आत्मघाती ढर्रे को तोड़ने की। अपने कान और अपने हृदय को सतगुरु के इस वचनों के लिए पूरी तरह खोल दीजिए। अपने मन की जिद को छोड़िए और उस राम नाम की शरण में जाइए, जो करोड़ों जन्मों के कर्मों के जाल को एक पल में भस्म कर देता है। जब आप गुरु के शब्दों को अपने जीवन का आधार बना लेंगे, तो यह मानव जन्म व्यर्थ जाने के बजाय परम सार्थकता को प्राप्त कर लेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: ट्यून इन एनीवेयर रेडियो मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।
2: भाग क्रमांक 50 बात तथागता। कितलाक विचारात जागाडात निराशा आयस हाव यसन आक्रमण तू पलटाई लाव तरी भी तुन ज्ञान भटकाड़ा साठे मारनी पलघड़ी करेल हल्ला तू पलटाई लावा। काना डोया करी तिराईत रहीशिनी समानता खाई शील समाईशिनी तवय कोठे बहुदिन्या तुना ज्ञान ठियाले फय लागिवन आणि बठ्ठा जगना समदा फेरानं ज्ञान तुले जाय तू बुद्ध जाया खरं काय खोटं काय समजणारा बुद्ध जाया माणूसना दुखना मुई लागे तू घ्या आणि ते वर्णा उपाय बी तू धुंडा येरायरमा अटकेल जलम मरणा सिद्धांत प्रत्युत्य समुत्पाद सिद्धांत तू मांडा आणि लोकेसना कल्याणना परवास आठ पायथऱ्यासना रस्ता तू दाखाडा तू इशारा कया मरा बाजतना सुख शांतीकडे आणि माणूसना आनंद समाधान मुक्तीकडे परिनिब्बान म्हणजे मुक्ती म्हणजे मरण पर मरणनं दुःख करो कसाले मरणले आंगवरले हो ते तिरायत सारखं गंभीर धीर वैशिनी देखो काढ आणि मरण सार्थके लागणं परिनिब्बान बोधवय जिंदगीना शेवट समाधान थाई खुशी थाई कर्तव्य पुरपाठ करा थाई तू लिहा अंगवरे अशी हिंमत आणि ताखात रास परिनिब्बान मुक्ती मजार कसा ना असू कसा निमाया कोणती हावना कोणता लोभ इतली मजबूती आणि दिटाई रास अखेरना सासले बाधता परिनिब्बान मुक्तीना परवास मधार माणूसना जिंदगी मा हरेक ना वाटे येतच अडथळा सामना कराना टाईम टक्करण्या लढाया नको तितला उसळ जागना डोम दुखना कितला तरी लागल धार असुसनी सका सगासना ताता तूट भय सगा सोयरासना मरण भय है किलवान पण अज्ञानना भय माणूसना जिंदगी मा रुती पटेल शे भेव भेव न कारण दुकानना अज्ञान म्हणजे समजे उमेशिनी ज्ञानना तप खाई अज्ञानना अंधार वस खतम त्यांबरोबर जास भेव दे बात थागता ज्ञान तपले तू ज्ञान तप बनाड आणि ध्यान साधना मातला करम कुवांडले दिनी मूठ माती ध्यान मातली मुद्दानी देवता करी तू बाद ध्यान मातला लोभीपणा ध्यान मातला नफा फायदा अशा सम सम करी खतम आणि ध्यानले दिनी हे ज्ञानी जोड अल्लग प्रकार थाई दखानं त्याला निरखणं चिंतन करणं दूर थाई एक जीव वैशिनी चिंतन मनन करणं आणि त्यांना बरं वाईट त्यांना बरं वाईट साफरणं असा यज्ञांना पंधरा दर्शिनी तुम्ही मनशुद्धी उभी राहिली मनशुद्धी विपस्याना म्हणजे अल्लग वैशिनी निरखणं त्यामा कोणतंच करम कुमाण ना नि श्रद्धा मनशुद्धी म्हणजे मनी एकजूट कोणाही सहारा बिगर दूर थाई अनुभव लेवानी गोट मनशुद्धी म्हणजे समस्यासना शोध आणि कारणेसनी झामल चाफल मनशुद्धी म्हणजे शरीरनी निमणी विज्ञानिक जाणीवशे मनशुद्धी म्हणजे मन मातला इचारेसले दूर थाई दखणं मनशुद्धी म्हणजे खरा खोटानी परिस्थिती येणारी ज्ञानी समाधी

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद रामा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत। कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेरी खुशी मुझसे छीन लेती हैं, या मैं देखूं तो मैं खुश नहीं रह पाता। उसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आई थी वो थे मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस। कहीं ना कहीं जो गुजर गया, जो कल था, उसे ऐसे पकड़ा हुआ था मैंने जब लेट गो किया या उस पास्ट को प्रेजेंट नहीं बनने दिया, तो मेरी खुशी फिर मैं क्रिएट कर पा रहा था। अब आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर की तरफ देखते हैं। फ्यूचर यानी मेरी प्लानिंग मेरे जीवन का आधार हो जाता है कि मुझे यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ ये सब कुछ करना है। तो क्या उसको करते हुए भी मैं कहीं अपनी खुशी से तो परे नहीं जा रहा? कोशिश करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: पास्ट को तो हमने मान लिया, हम सब जानते हैं सिस्टर शिवानी की पास्ट को नहीं पकड़ कर रखना चाहिए। और बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने पिछले कई कड़ियों में ये बात आई कि क्या ऐसा प्रोसीजर है कि हम जो गुजर गया उसे जाने दें और उसे अपना प्रेजेंट ना बनाएं। लेकिन फ्यूचर प्लानिंग तो हर कोई करता है। फ्यूचर प्लान्स की बात करते हैं, गोल्स की बात करते हैं, अचीवमेंट्स की बात करते हैं, और फिर एक लक्ष्य साध कर उस पर आगे बढ़ते जाना। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि मैं अपने फ्यूचर को ध्यान में रखता हुआ अपनी आज की स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाऊं।
1: Yeah, very important, क्योंकि इस पर जब हम बात करें तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मुझे लगता है उठने वाले हैं कि क्या फ्यूचर प्लान नहीं करें। अलग अलग तरह से हम इसको देखते कि कैसे हम, जैसे हमने पिछली बार देखा कि हम पास्ट में बहुत ज्यादा जीते हैं, हम यहाँ हैं लेकिन मन पास्ट के बारे में सोच रहा, उतना ही हम देखते कि हम फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा जीते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं खुशी को जब हम ढूंढते हैं तो खुशी को हम फ्यूचर में बहुत ढूंढते हैं। आई एम नॉट हैप्पी नाउ बट आई विल बी हैप्पी
0: इफ दिस थिंग हैपेंस, वंस आई अचीव दिस।
1: सो व्हेन आई से आई विल बी हैप्पी व्हेन दिस हैपेंस, आई हैव पुट माय हैप्पीनेस इनटू द फ्यूचर, एंड तब मेरा सारा ध्यान ये होता कि ये होगा तो खुशी होगी। अब दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, अगर ये होगा तब खुशी होगी। जब ये थॉट आती तो साथ में ये भी थॉट आ जाएगी, अगर नहीं हुआ तो यू सी व्हेनेवर देयर, नो इट कुड बी फियर, इट्स ओनली अ फियर,
0: एंड आई विल नॉट बी हैप्पी, यू नो इट विल टेक अवे माय हैप्पीनेस।
1: दैट इज व्हाट वी सॉ अर्लियर, कि जब भी हैप्पीनेस किसी चीज पर डिपेंडेंट होती है तब फियर ऑटोमेटिकली आ जाता, क्योंकि जहां डिपेंडेंसी है वहां ये इनसिक्योरिटी तो होने ही वाली है कि अगर वो नहीं हुआ तो, या अगर वो चले गए तो, व्हाटएवर। सो डिपेंडेंसी एंड इनसिक्योरिटी ये साथ साथ जाएंगे। जहां मेरी किसी चीज पर डिपेंडेंसी है तो एक थॉट अंदर इनसिक्योरिटी का साथ साथ आ ही जाएगा। तो हैप्पीनेस एंड फियर कैन नॉट बी टुगेदर। आई एम लुकिंग फॉर हैप्पीनेस देन, दैट मीन आई एम नॉट हैप्पी नाउ, आई एम सेइंग ये होगा तो आई विल बी हैप्पी, लेकिन नाउ व्हाट एम आई क्रिएटिंग? साथ साथ मैं वो फियर के थॉट्स भी क्रिएट करना शुरू कर देती कि अगर ऐसा हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो, अगर नहीं हो पाया, अगर वो नहीं कर पाए, अगर वो कल मेरे साथ नहीं हुए। सी, बहुत सारी चीज़ें हमें जीवन में मिली हैं लेकिन हम बहुत बार फियर में जीते हैं कि कहीं ये हमारे से छूट ना जाए। तो उस प्रोसेस में क्या होता, हम उनको प्रेजेंट में, सी, फियर ऑफ लूजिंग जॉब, फियर ऑफ लूजिंग प्रॉपर्टी पोजेशन, फियर ऑफ लूजिंग फैमिली, कहीं मेरे परिवार को कुछ ना हो जाए, एंड सबसे ज्यादा फियर कहीं मुझे कुछ ना हो जाए। अब इन सारे लिस्ट ऑफ फियर्स में हमें ये भी पता है कि एक ना एक दिन सारी चीजें जो मिली हैं वो जाने ही हैं, लेकिन वो जब तक मिली हैं उनको इंजॉय करने की बजाय मैं फ्यूचर को एंटिसिपेट कर करके अभी क्या क्रिएट करती? See, once we understand happiness creation है यहाँ पर, happiness is not outside, तो मुझे सिर्फ सारा दिन क्या चेक करना है, मेरी thoughts क्या है, मेरी thoughts क्या है। तो अब जितनी देर मैं ये सोच रही हूँ ये होगा तो, साथ में दूसरी thought ही आएगी,
0: अगर ये नहीं हुआ तो।
1: तो अब जब मैं fear, वैसे भी जब मैं सोच रही हूँ कि ये होगा तो अभी मैं खुश नहीं हूँ, मैं अपने आप को ये कह रही हूँ ये होगा तो खुशी होगी, तो अभी का इमोशन कौन सा है? फियर का है। तो इसलिए हर पल हमने देखा, इस पल में अगर हम इस पल के बारे में सोच रहे हैं नेक्स्ट वाले, तो ये पल कैसा बीता? डर में। तब तक फिर यहाँ गए, तब कौन से पल के बारे में सोचा? नेक्स्ट वाले।
0: तो एंटिसिपेशन में, डर में, डर में, ये होगा।
1: ऐसे करते करते आपकी पूरी जर्नी किस में बीती?
0: और वो पल तो निकलते ही गए, मैंने सोचा था कि एक साल के अंदर अंदर ये होगा.
1: देखो अलग अलग तरह से हम फ्यूचर के बारे में सोचते. एक होता है जो लोग बहुत चिंता करते हैं, जो मेरे को लगता है हम सब चिंता करते हैं, वरी, वेरी वरी काइंड ऑफ पर्सनालिटी. जो वरी करते हैं वो किसके बारे में सोच रहे हैं?
0: फ्यूचर
1: के बारे में सोच रहे हैं. अगर ये हुआ तो एक दिन सिर्फ चेक करना कि वरी की जो थॉट्स होती हैं उसमें होता क्या है, किस तरह की हम थॉट क्रिएट करते. हम आने वाले पल के बारे में, फ्यूचर के बारे में एक इमेज क्रिएट कर देते, वो इमेज अच्छी नहीं होती है. चिंता मतलब कि कुछ बुरा होने वाला है, चिंता मतलब कुछ अच्छा होने वाला है, ये थॉट नहीं आएगा. तो चिंता मतलब कुछ ट्रेजेडी, कुछ कैटास्ट्रोफ, कुछ गड़बड़ वाला होने वाला है, वो इमेज हम अभी क्रिएट कर देते और अभी इस पल उस इमेज को देख देख के
0: डरते
1: रहते हैं. सो आई बेसिकली क्रिएट अ फ्यूचर इमेज, नॉट अ प्लेजेंट वन, एंड आई यूज दैट पिक्चर इन माय प्रेजेंट मोमेंट एंड आई क्रिएट पेन. सो माय एवरी मोमेंट वरिंग अबाउट द नेक्स्ट मोमेंट, माय एवरी मोमेंट इज पासिंग इन पेन बिकॉज आई एम क्रिएटिंग अ पिक्चर ऑफ.
0: सपोज आई एम वेरी पुअर, यू नो मेरे घर में सब क्योस है, मेरे जीवन में क्राइसिस आया हुआ है जिसको मैं कुछ नहीं कर पा रहा. दैट इज द टाइम व्हेन आई यू नो अपना काम तो कर्म तो करता ही रहूंगा, लेकिन यू नो यू कीप ऑन एंटिसिपेटिंग योर फ्यूचर एंड वेयर यू सी दैट यू नो यू विल गेट मनी या ये चीजें सॉर्ट आउट होती जाएंगी, होता जाएगा. एटलीस्ट इट्स गिविंग मी हैप्पीनेस फॉर दैट टाइम बिकॉज अभी जो मैं चाह रहा था वो नहीं हो रहा.
1: इसको हम कहेंगे ड्रीमिंग पर्सनैलिटी. कि आप अभी यहाँ है लेकिन यहाँ आप टुमोरो में है. यू ऑलरेडी गॉन टुमोरो एंड यू विल फाइंड पीपल हु लव टू बी इन देयर टुमोरो. जिसको हम कहेंगे ये तो ख्वाबों में ही रहते हैं अपने ज्यादा दिन. क्यों वो ख्वाबों में रहते हैं? उनको आज पसंद नहीं है. दे आर इन पेन. सी व्हेन विल आई एस्केप फ्रॉम टुडे एंड लिव इन द टुमोरो.
0: आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर एक्चुअली, यू नो वी डोंट वांट टू लिव इन द प्रेजेंट.
1: ईच वन नीड्स टू चेक. हर एक अपना अपना देखेगा.
0: व्हाई वी डोंट वांट टू लिव इन प्रेजेंट?
1: क्योंकि अभी मेरे अंदर दर्द है, मैं उस दर्द के ऊपर काम नहीं करना चाहती हूँ, मैं मेहनत नहीं करना चाहती हूँ इससे, पर मैं फील तो अच्छा करना चाहती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ
0: कहीं पे भी. हाँ, किसी
1: कोई सी वी टेकिंग डिफरेंट वेज ऑफ स्विच यू नो एस्केपिंग दीज थॉट्स ऑफ पेन. जो हमने देखा, चाहे टीवी देखना है, चाहे हॉलीडे पर जाना है, वो ये क्या कर रहा था? वो ये कर रहा था कि ये अभी वाली जो दर्द वाली थॉट्स हैं इनको थोड़ी देर के लिए, एटलीस्ट चलो घंटे के लिए भी, एटलीस्ट एक घंटे के लिए मैं इनको साइड पे करूँ, मैं कुछ और देखूँ, आई विल फील गुड. जितनी देर मैं फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ, सपोज मैं 15 मिनट, अभी मैं बहुत दर्द में हूँ लेकिन मैंने माइंड को अपने अगले साल में शिफ्ट कर दिया और मैं फ्यूचर के बारे में सोचते गई एंड आई क्रिएट अ ब्यूटीफुल फ्यूचर. तो 15 मिनट क्या हुआ? आई एस्केप्ड, आई रैन अवे फ्रॉम माई प्रेजेंट थॉट्स ऑफ पेन एंड आई लिव्ड इन द फ्यूचर एंड आई क्रिएटेड अ वेरी ब्यूटीफुल फ्यूचर. आई फेल्ट नाइस आफ्टर दैट.
0: आई कम बैक रिफ्रेश्ड. But can I, can't I
1: don't come back refreshed. I come back even more in pain. क्योंकि ऐसे
0: ये तो अभी बचा है यहाँ पे,
1: अभी तो नहीं है ना. लेकिन जो भी हम कहते हैं ना, पास्ट की भी मेमोरीज, चलो आज बहुत दर्द में है लेकिन पिछला साल बहुत अच्छा बीता था, राइट? तो चलो पिछले साल को याद करके मुझे बहुत अच्छा लगता है. 10 मिनट याद कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा. 11वां मिनट क्या हुआ? दर्द हो गया. लेकिन अभी तो नहीं है ना वो
0: अभी क्यों नहीं आ सकता? एंड देन दिस यू नो कि वही चीज क्यों नहीं हो जाती?
1: पेन इज इन द प्रेजेंट मोमेंट. तो मुझे एड्रेस भी उसको कहाँ करना पड़ेगा, उसको फेस भी कहाँ करना पड़ेगा? यहाँ. अगर इफ आई कीप रनिंग अवे फ्रॉम माय पेन, दैट्स नॉट द सॉल्यूशन. बीमारी है, लेट्स एड्रेस द इलनेस. बीमारी को ठीक करते हैं. ख्वाबों की दुनिया में जी के कि ये ठीक हो जाएगा तो ऐसा होगा, ठीक हो जाएगा. और अगर आज उसको ठीक नहीं किया तो अगर आप सोचते भी रहे कि ये कल ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा. अगर आज हम दर्द में हैं और अगर हमने उसको ठीक नहीं किया अपने थॉट्स को, तो कल कौन सी थॉट्स होंगे? सिचुएशंस चेंज हो जाएंगी. सी हम क्यों कल के बारे में सोचते? क्योंकि हमने सोचा खुशी परिस्थितियों पे डिपेंडेंट है. तो आज परिस्थिति ठीक नहीं है, मैं दर्द में हूँ, लेकिन आई एंटिसिपेट कि कल परिस्थिति ठीक हो जाएगी. एंड मैं कंक्लूजन ये ले आती हूँ कि जब परिस्थिति ठीक हो जाएगी तो कल मैं खुश होंगी. व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज कि यस, परिस्थितियाँ कल बहुत अच्छी हो जाएंगी. जो आपने जैसे कहा कि समवन इज वेरी पुअर, आज उनके पास धन नहीं है, हो सकता है जैसे वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कल उनके पास बहुत धन आ जाए. वेरी गुड. बट इट डज नॉट मीन कि उनके पास तब बहुत खुशी भी आ जाएगी. खुशी यहाँ की क्रिएशन है और उसको हमें हर पल में क्रिएट करना होगा. अगर हमने आज उसको नहीं क्रिएट किया, बिकॉज थॉट इज अ सीरीज ऑफ थॉट, तो अगर मेरा दिस थॉट इज इन पेन, देन माई नेक्स्ट थॉट will automatically be in pain, then the next thought will automatically be in pain. And that's why we say, if today is in pain and aaj usko address nahi kiya, to tomorrow will automatically still be in pain. Aap kitna bhi sochte jao ki bahut acha ho jayega, bahar acha ho jayega, lekin yahan to fir bhi dard create hoga.
0: To ye kaha jata hai ki sapno mein rehna chahiye ya sapne lene to chahiye kam se kam. To again I just want to know ki whether it's a right personality, right way of looking.
1: Escaping from the present. What is, you know, fantasizing bahut zyada bhavishya ke bare mein, escaping from the present. So how far would that be beneficial for me? Again, main energy, main apni wo thought power use kar raha hoon kuch aisi cheez ko create karne mein jo ki mere control mein
0: hai hi nahi.
1: Mere control mein sirf ye wala pal hai aur is pal mein meri sthiti, ye mere control mein hai, iske ilawa mere control mein कुछ भी नहीं.
0: बट क्रिएटिविटी तो ये कहा जाता है कि यू नो क्रिएटिंग योर ओन ड्रीम्स,
1: क्रिएटिंग योर मोमेंट राइट नाउ. आप आज क्रिएट करते जाओ, आज से आपका कल ऑटोमेटिकली अच्छा क्रिएट होता जाएगा. सी व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज अ सीरीज. आज अच्छा फील कर रहे होगे, घर पहुंचोगे, सबके साथ अच्छे होगे, रात को नींद अच्छी आएगी, कल सुबह उठोगे अच्छा ही फील करोगे. लेकिन आज चिंता में बिता दिया, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, तो कल क्या होगा?
0: कल वो आ जाएगा जिसने मुझे खुशी देनी है.
1: खुशी देनी है वो सिचुएशन आ जाएगी, लेकिन आज अगर मैंने चिंता क्रिएट की थी तो कल भी मेरे मानसिक स्थिति कैसी होगी?
0: और हो सकता है वो सिचुएशन जब तक आए तब तक मेरे सर में दर्द हो चुका,
1: और कल मेरे पास एक और कल है ना चिंता करने के लिए. सी अगर मेरी आदत बन गई है चिंता करने की, तो दिस इज गोइंग टू गो ऑन विद मी टिल द एंड. Someone very beautifully said at the ending phase of their, you know, this particular birth, they said, I have spent all my life worrying about those things which never actually happened. Hum puri jeevan bitate hain un baaton ke bare mein soch ke chinta karke jo actually hui nahi. Jab wo hogi tab dekhenge na. Why do I create it beforehand? To fir hum kehte, main isliye chinta karta hun because I care. I worry because I care. To humne worry aur केयर को जोड़ दिया. केयर तो प्यार है, स्नेह की शक्ति है, और वरी फियर की शक्ति है. तो फियर और स्नेह ये इकट्ठे नहीं हो सकता. दीज आर टू एनर्जीज.
0: आई एम अफ्रेड एक्चुअली दैट आई विल लूज फियर.
1: सो ये जो चिंता करने की आदत है, भविष्य का क्रिएट करके अभी डर में जीने की आदत है, इससे हमारी बहुत सारी एनर्जी डिप्लीट हो जाती, और इससे मेरा प्रेजेंट मोमेंट डेफिनेटली दर्द में बीतता. दूसरा जो आपने कहा अचीवमेंट, अचीव करना है, वेरी गुड, आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग. लेकिन उनको भी जो इस तरह की जीवन जीते हैं, जो डिपेंडेंट है अचीव करने में, तो क्या होता है उनका हर टाइम जो मानसिक स्थिति है ना, इट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट टू अचीव नेक्स्ट. यू नो वो ऐसे नहीं बैठ पाएंगे विद नथिंग रियली हैपनिंग हियर, नेक्स्ट व्हाट टू अचीव, क्योंकि वो जो अचीवमेंट है वो उनको एक
0: स्टिमुलेंट
1: है, वो उनको एक किक देता है. समटाइम्स इट कुड बी रिकग्निशन, औरों का अप्रूवल, औरों से रिकग्निशन. समटाइम्स इट कुड बी जस्ट द रियलाइजेशन, हो गया ये मेरे से, ये भी हो गया. या समटाइम्स इट इज काम तो करते ही जाना है क्योंकि उसी से मुझे खुशी मिलती है. तो वो क्या करते हैं, अपना सेट करते जाते हैं, यू नो टिक चेकलिस्ट होती जाती है, ये हुआ अचीव किया. जिस पल अचीव करते हैं तो एक रिलीफ एक्सपीरियंस होता है, चलो ये भी हो गया, ये रिलीफ है, ये खुशी नहीं है, पर ये भी बहुत थोड़ी देर रहेगी क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट, अब नेक्स्ट क्या अचीव करना है. तो जिन्होंने अपनी खुशी को इस अचीवमेंट पर भी डिपेंडेंट कर दिया, तो वो खुश भी नहीं होते उस पल, सिर्फ रिलीव्ड होते हैं, और वो भी लेकिन कितनी देर के लिए, शॉर्ट, नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट. सो वी वॉन्ट हैप्पीनेस टू बी every
0: constant
1: time,
0: yes,
1: every time, not fear mein ya insecurity mein ya anticipation mein next kya hoga ya ye bhi karna hai, kyunki jab ye kar lunga tab khushi hogi. Tab unka sara focus kis pe shift ho jata hai, ab kya karna hai next. Us process mein present pal beet jata hai. Ab aise logon ke jeevan mein achievements bahut sari aa jate, they achieve a lot kyunki unka focus hi life mein wo hai, ye achieve karna hai. Lekin khushi, they need to ask themselves, दैट दे नो बेस्ट कि उनका, क्योंकि वो जो पूरी यात्रा होती है फ्रॉम वन अचीवमेंट टू द नेक्स्ट अचीवमेंट वो काफी
0: उसमें काफी वो जो फियर ऑफ यू नो लूजिंग एंड देन जो मेरे पास है वो भी छूट जाएगा या वहां तक पहुंच जाऊंगा तब. वंडरफुल. आई थिंक
1: और वो कहीं ना कहीं उनकी खुशी उस अचीवमेंट पर बहुत डिपेंडेंट हो जाती है, यू नो, क्योंकि वो एक संस्कार बन गया.
0: जब वो नहीं मिल रहा हो तो तब तक ऐसे रहते हैं, ऐसे हो जाते हैं.
1: और उस अचीवमेंट को पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं. दिस इज वेयर अ लॉट ऑफ अस स्टार्ट मेकिंग कॉम्प्रोमाइजेस, चाहे वो अपने वैल्यू सिस्टम पे है, चाहे वो अपनी फैमिली पर है, चाहे वो क्यों, क्योंकि अचीव करना, अचीव करना, अचीव करना, अचीव हो जाएगा खुशी, पता नहीं, इट्स अ क्वेश्चन मार्क, दे हैव टू आस्क देमसेल्व्स. एंड जैसे ड्रीम करना, बहुत ज्यादा भविष्य के बारे में सोचना, अनदर वेरी कॉमन थिंग जो हम करते हैं, जो हम फ्यूचर में खुशी ढूंढते हैं, दैट इज आवर डिजायर्स. एवरीवन, वी ऑल से के इच्छाओं के बिना तो जीवन कैसे बीत सकता है. आई डिजायर फॉर दिस, आई डिजायर फॉर दिस, अगेन सेइंग ये होगा. आई कुड डिजायर फॉर ऑब्जेक्ट कि ये मिलेगा तो खुशी. आई कुड डिजायर फॉर मोर लव फ्रॉम पीपल. आई कुड इवन डिजायर फॉर मोर टाइम. और टाइम मिल जाए ना, मुझे तो 24 घंटे ही कम पड़ते. तो ये डिजायर्स की भी जो हमारी लिस्ट है वो बहुत लंबी होती जाती और कई बार तो पूरी भी होती जाती वो हमारी डिजायर. लेकिन जितनी डिजायर्स पूरी होती उतनी लिस्ट
0: और बड़ी होती जाती,
1: और भी लंबी होती जाती. क्योंकि ये इच्छाओं के पीछे एक बहुत सूक्ष्म सकल जो थॉट है वो ये कि जब ये डिजायर मेरी अचीव हो जाएगी, आई दैट सेल्फ विल बिकम कम्प्लीट. यू नो, व्हेन आई गेट दिस मोर फ्रॉम यू, आई विल बिकम कम्प्लीट, आई विल बिकम कंटेंटेड. राजयोग हमें ये सिखाता, आई द सेल्फ
0: इज ऑलरेडी
1: कैन नॉट बी कम्प्लीट बाय एनीथिंग outside, I am already complete. मुझे कुछ भी बाहर से नहीं चाहिए जिससे मैं complete हो
0: जाऊँ. क्यों नहीं करते, you know? हम feel complete क्यों नहीं करते अगर हम हैं, you know, like if we understand this whole concept, तो हमें ये जो अर्च है बाहर से, चाहे प्यार की, चाहे ज्ञान की, चाहे किसी भी चीज की या अचीवमेंट की, ये फिर क्यों है?
1: बिलीफ सिस्टम. क्योंकि फीलिंग किस पे डिपेंडेंट है?
0: बिलीफ.
1: अगर मेरा बिलीफ ये है कि ये होगा तो आई विल फील गुड, ये होगा तो आई विल फील कंप्लीट, तो देन आई विल फील लाइक दैट ओनली, एंड आई विल कीप लुकिंग फॉर.
0: लेट्स ट्राई टू चेंज दैट एंड से दैट आई एम ऑलरेडी फुल,
1: आई एम कंप्लीट, आई एम फुल, आई एम ब्यूटीफुल.
0: बट हाउ विल आई क्रिएट दैट बिलीफ सिस्टम नाउ?
1: अभी हमने क्रिएट कर दिया ऑलरेडी. अब इसको क्या करना है, इस बिलीफ सिस्टम को जीवन की यात्रा में लेके चलना है. जैसे ही कोई थॉट आए ये होगा तो मुझे अच्छा लगेगा, इमिजिएटली स्टॉप एंड टेल योरसेल्फ,
0: तो अच्छा तो है,
1: तो ऑलरेडी अच्छा, आई एम ऑलरेडी फीलिंग नाइस. हाँ ये हो, वेरी गुड, लेकिन मेरा फीलिंग इसके होने पर डिपेंडेंट नहीं है. एक दिन इसको करके देखो, यू विल सडनली स्टार्ट फीलिंग वेरी वेरी लिबरेटेड. क्योंकि अभी तो हम इतनी चेन्स में बंधे हुए हैं कि ये सब होगा देन आई विल फील गुड, एंड ये सब कुछ मेरे अनुसार.
0: लेकिन वो जब हो रहा होता है तब तो वी फील, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड दैट, ओह वी हैव क्रिएटेड दैट थॉट कि अगर वो होगा तभी फील करेंगे, इसीलिए जब वो होता है तो हम फील करते हैं.
1: लेकिन उसके बाद फिर हमने एक और थॉट भी तो क्रिएट हो गया था, अब ये होगा देन आई विल फील गुड. सी, जैसे ही वो डिपेंडेंट है तो वो हमेशा ही डिपेंडेंट रहेगी. तो जैसे ही सपोज आई एम डिपेंडेंट कि आप मुझसे अच्छी तरह से बात करें, देन आई विल फील गुड. तो आपने मुझसे बहुत अच्छी तरह से बात, आई फील वेरी गुड. लेकिन अब आई एम डिपेंडेंट कि आप हमेशा मुझसे अच्छी तरह से बात करेंगे, दैट इज समथिंग आई डोंट
0: एक्सपेक्टेड.
1: देन इट्स नॉट ओनली ऑन यू, नाउ आई एक्सपेक्ट कि सब लोग हमेशा मुझसे बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे. हाउ फार इज दैट इन माय कंट्रोल?
0: एक बार मेरा एक बिलीफ सिस्टम ये रीइंफोर्स हो गया कि मैंने ये सोचा था कि ये अच्छी तरह से बात करेंगे, मैं फील गुड करूंगी, वही हुआ, तो हर जगह यही चलेगा.
1: एब्सोल्युटली.
0: तो अगेन आई थिंक इट कैन, वी कैन रिवर्स इट. इस पर मैं बात करती हूँ कि कैसे, हाउ टू डू दैट. लेकिन उससे पहले एक थॉट पावर की जब बात होती है कि वट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ, यू नो, स्थूल में भी करें या जो भी चीज चाहिए, उसको क्रिएट करो, उस फ्यूचर को देखो और उसके बाद उसको विजुलाइज करो. मतलब थॉट क्रिएट किया, सपोज मुझे एक पोस्ट चाहिए, अच्छा मेरे को अपना कंपनी का सीईओ बनना है. आई क्रिएट दैट थॉट एंड देन आई स्टार्ट विजुलाइजिंग माई सेल्फ, स्टार्ट लिविंग इन दैट एंड स्टार्ट लिविंग इन, यू नो, गिविंग इट ऑल विदाउट एनी ट्रेस ऑफ, यू नो,
1: डाउट.
0: एंड इट हैपन्स एंड पीपल आर डूइंग इट नाउ. आई एम सेइंग लाइक इट्स सो मच इन थिंग नाउ.
1: ट्रू.
0: But then, am I able to live in my present then?
1: It all depends how you're feeling that time. See, some people are being able to achieve it, and yet at the same time, there are many, many people who are not being able to achieve this. Kyunki jaise hi, it's very good.
0: I tried this with myself, I was not able to achieve this.
1: Because once we understand, thoughts create destiny. तो हमें जब ये समझ में आ गया तो हमने इसको किन चीज़ों के लिए यूज़ करना शुरू किया. आई क्रिएट अ थॉट तो मुझे ये मिलेगा, ये प्रमोशन मिलेगी, ऐसा हो जाएगा मेरे जीवन में. फिर हमने वो एनर्जी उसके प्रति क्रिएट करनी शुरू कर दी. लेकिन हम बहुत कम हैं जो उसमें एक भी थॉट ऑफ डाउट नहीं क्रिएट करते. क्योंकि जैसे हमने पहले देखा, ये होना ही चाहिए, ये हो, यू नो, आई गेट अटैच टू द आइडिया कि ये मुझे मिलना ही चाहिए. तो कहीं ना कहीं एक थॉट तो दर्द की जरूर क्रिएट होती,
0: सपोज
1: नहीं मिला तो. एंड मैं बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाती हूँ उस प्रेडिक्टेड फ्यूचर पे, है ना, ये होना ही है, दिस हैज टू हैपन, इफ इट हैपन्स वेरी गुड, लेकिन बाय चांस नहीं हुआ तो. अगर वो नहीं हुआ, क्योंकि जब सब कुछ जो हो रहा है वो सारा कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है, अब वो जब नहीं होता, आई गो एब्सोल्युटली. जब हम कहते हैं थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी, तो हमें ये समझना पड़ेगा जो थॉट्स मैं क्रिएट कर रही हूँ अभी, वो मेरी अभी की डेस्टिनी बना रहे हैं, अभी हाउ आई फील, एंड ऑल्सो वॉट इज गोइंग टू हैपन विद मी. एंड सिमिलरली अभी जो मेरे साथ हो रहा है, इट इज बेस्ड ऑन मेनी थॉट्स दैट आई हैव क्रिएटेड इन द पास्ट. अब क्या होता, मैंने अभी तो अपनी थॉट्स की क्वालिटी चेंज कर ली, लेकिन हो सकता है पहले मैंने बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी थॉट्स पहले क्रिएट की थी, विच हैज गॉन आउट इन टू द यूनिवर्स. जो हम कहते हैं ना, थ्रो दिस एनर्जी आउट इन टू द यूनिवर्स, तो वो भी तो बहुत सारी एनर्जी भेजी हुई है, विच इज ऑल्सो ऑन इट्स वे बैक. तो हम तुरंत रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, अभी मैंने ये थॉट क्रिएट किया, ये मेरे साथ हो जाना चाहिए. गेटिंग अटैच्ड टू समथिंग ऑफ द फ्यूचर, मोर इम्पोर्टेंट वुड बी अभी अपना ध्यान रखते जाएं, एक तो अंदर और एक तो बाहर. काम कर रहे हैं आप, एफर्ट कर रहे हैं, सिंसियरली कर रहे हैं, हर मोमेंट को इस मोमेंट में अच्छा बिताते जाएं. एंड देन आप देखेंगे जैसे जैसे एक पल अच्छा बीतेगा तो अगला पल अच्छा बीतेगा ही बीतेगा. ये पल अगर अच्छा ना तो नेक्स्ट पल तो बीतना ही है. एंड ये करने से आपके अंदर इतनी ताकत, इतनी शक्ति अक्यूमुलेट हो जाती है कि अगर सिचुएशन आपकी फेवर में नहीं भी आती, कोई भी सिचुएशन, आपके अंदर बहुत ताकत है उस सिचुएशन को फेस करने की. लेकिन हर पल अगर इस फियर में या एंटिसिपेशन में अगले पल के लिए बिता दिया, तो हम इतने कमजोर हो जाते कि जब कोई सिचुएशन हमारे सामने आती जो हमारे फेवर में नहीं है, आई डोंट हैव द पावर टू फेस सिचुएशंस. सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं. ऑल दैट वी आर ट्राइंग टू डू इस पूरी सीरीज में, हम क्या ट्राई कर रहे हैं, हम क्या ऐसा करें ताकि हम पावरफुल रहे, हम शक्तिशाली रहे, ताकि कुछ भी हो जाए, आई विल बी एबल टू रिमेन स्टेबल. अब जितना फ्यूचर के बारे में सोचेंगे जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो थॉट्स एम आई क्रिएटिंग, अगेन आउट ऑफ कंट्रोल थॉट्स, अगेन फियरफुल थॉट्स, एंटिसिपेटरी थॉट्स, एनर्जी डिप्लीट होती जा रही, डिप्लीट होती जा रही, तो फिर मेरे अंदर की जो शक्ति है कम होती जा रही है.
0: तो अगर, तो हाउ टू गो अबाउट, वी हैव टू मेक आवर फ्यूचर प्लान्स, वी हैव टू मेक आवर गोल्स एंड वर्क फॉर देम आल्सो. सो व्हाट एनर्जी,
1: अगर गोल बनाना भी है आपने तो गोल बना दे, लेकिन जैसे हमने पहले भी कहा, एक्सपेक्टेशन बट विदाउट गेटिंग डिपेंडेंट ऑन द एक्सपेक्टेशन, कि एक्सपेक्टेशन रखी लेकिन साथ साथ ये भी तैयारी कर ली कि अगर पूरा नहीं हुआ तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट हर्ट. सो सिमिलरली गोल बनाना है, आप गोल बना दें लेकिन लिविंग इन द
0: प्रेजेंट,
1: ये नहीं ये होगा तो खुशी मिलेगी. यू नो क्या होता है, गोल्स बनाना मतलब हमारा सारा लक्ष्य क्या हो जाता है,
0: उसी की
1: किसी तरह वो गोल पूरा हो जाए.
0: एक्चुअली फिर हम किसी भी परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होते. अमेजिंग है कि वी एक्चुअली हम इतने रिजिड हो जाते हैं फिर.
1: नहीं, और क्या होता है, वो गोल को, क्योंकि मैंने ये थॉट प्रोग्रामिंग कर ली कि ये गोल जब अचीव होगा तब खुशी मिलेगी, तो मैं उस गोल को अचीव करने के लिए फिर कुछ भी करते जाऊंगे. नाउ इन द प्रोसेस आई कैन गो थ्रू स्ट्रेस, आई कैन क्रिएट एंगर, आई कैन हैव प्रॉब्लम्स इन रिलेशन, लेकिन मुझे किसी भी तरह उस गोल को क्रिएट करना है. क्यों? क्योंकि मेरी खुशी वहां खड़ी है. यू सी, सो हाउ हेल्दी इज दिस फॉर मी, दिस आई हैव टू चेक कि मेरी एनर्जी कितनी डिप्लीट होती जा रही है. तो अगर हम एक दिन ट्राई करें इस बिलीफ सिस्टम के साथ कि मेरा जो बेस्ट मोमेंट है वो ये वाला मोमेंट है. आई डोंट हैव टू वरी अबाउट द फ्यूचर, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट द पास्ट, आई हैव टू इंजॉय विद द फर्म बिलीफ कि मेरे साथ जो भी होने वाला है
0: वो अच्छा
1: होने वाला है. क्यों मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है? अगर मैं एनर्जी ही अच्छी क्रिएट कर रही हूँ अभी, तो एनर्जी जो बाहर जाएगी वही एनर्जी वापस आने वाली है. सो आई क्रॉस एवरी मोमेंट विद द फर्म बिलीफ कि मेरे साथ जो भी होने वाला है वो अच्छा ही होने वाला है. ये मुझे अभी कैसा फील कराएगा?
0: गुड,
1: बहुत लाइट. आई टेक लाइफ इन अ क्रिएटिव वे, यू नो, कि हर पल ये हल्केपन से खेलते हुए. लाइफ इज मेंट टू बी एंजॉयड. हमने उसको बहुत सीरियस, यू नो, सीरियस वो क्यों कर दिया? क्योंकि भविष्य, भविष्य का डर, नहीं हुआ तो क्या. एक एक पल को जीते जाएं प्रेजेंट में. ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, करके देखना है कि एक दिन आने वाले कल के बारे में ना सोचकर आज को देखें. आज में भी हर पल को देखते जाएं तो आपका अगला पल अपने आप अच्छा होने वाला है.
0: और उसमें कोई भी सिचुएशन भी आ जाएगी, सपोज आज मैं ठीक हूँ लेकिन अगले ही पल कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, उसे हैंडल करने की भी मेरे पास शक्ति होगी क्योंकि मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ. यू नो, कई बार क्या होता है क्योंकि हम देख ही नहीं पाते उस सिचुएशन को.
1: हर सिचुएशंस देखो आने वाली है, चैलेंजेस आने वाले हैं, लेकिन क्योंकि हमें वो अभ्यास नहीं है उस प्रेजेंट मोमेंट में रहने का, तो वो सिचुएशन आते ही भी हम बहुत सारा क्रिएट कर लेते हैं.
0: अब क्या होगा.
1: एंड एक्चुअली सिचुएशन बहुत बड़ी नहीं होती है कोई भी. ये जिस फाइनेंशियल क्राइसिस की भी हमने बात की थी, इसको फेस प्रेजेंट मोमेंट में रहकर करना है, लेकिन सारी एनर्जी किस में वेस्ट हो जाती है? हम कहते हैं ना, एंथुजियाज्म खत्म, मोटिवेशन खत्म. क्यों? सारी एनर्जी किसमें हो गई? अब क्या होगा, आगे क्या होगा? सेविंग्स खत्म हो गई तो बच्चों की
0: हमने पूरा विजुलाइज भी कर लिया होता है. हर बार कोई सिचुएशन आते हैं, हम पहले फ्यूचर ही विजुलाइज करते हैं. तो समवेयर वी रियली नीड टू चेक. शिवानी, थैंक यू सो मच. और अगर आपके पास कोई बात, कोई सवाल है, या तो फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हमें समझ में आई है कि जिस पर हमारा फ्यूचर डिपेंड कर सकता है कि मेरा आज कैसा होगा. स्टॉप थिंकिंग अबाउट फ्यूचर. एक्चुअली वो प्लानिंग करना एक दिन के लिए बंद करके देखें, फिर अपना अनुभव हमें भी लिखें और खुद लोगों के साथ भी शेयर करें और खुद समझें भी. आज इतना ही, आगे मुलाकात होगी. ओम शांति.

0: बचपन में विनोबा खूब बीमार रहते थे। माँ हमेशा कहती थी कि हमारा विनया 6 महीने निकाले तो बहुत, कुछ न कुछ बीमारी होती ही रहती थी, इसीलिए डॉक्टरी दवा भी कुछ न कुछ चला करती थी। विनया को ये दवा पिलाते समय माँ रोज उससे ये श्लोक बुलवाती, औषध जानवी तोय वैद्यो नारायणो हरि। विनु उस प्रकार बोलता जाता। एक दिन इसका अर्थ उसके ध्यान में आया तो माँ से कहने लगा,
1: अरे माँ, इसमें तो भगवान को वैद्य और गंगा जल को औषध समझने के लिए कहा है।
2: तेरा वह अर्थ तो सही है, परंतु उसके लिए वैसी योग्यता चाहिए। तेरे लिए उसका अर्थ अलग है।
1: वो कौन सा है?
2: डॉक्टर को भगवान समझ और वह जो कुछ औषध दे उसे गंगा जल समझ।
1: परंतु माँ, ये 2 भूमिकाएं हैं, दोनों भूमिकाओं में, दोनों बातों में तथ्य है। माँ, तूने ये कांच की चूड़ियां पहन रखी हैं, ये सौभाग्य का चिन्ह है या दुर्भाग्य का? तेरा सौभाग्य तो तेरे हाथ में नहीं, उस कांच के कारखाने के हाथ में है। ये सौभाग्य है या दुर्भाग्य?
2: अरे बेटा, कांच की चूड़ियां पहनने के पीछे भी एक दृष्टि है। कांच की चूड़ियां पहनी तो सावधानी से ख्याल रखते हुए काम करना होता है, फिर धड़ाम धम काम नहीं कर सकते। जैसे जनेयू पहनने से रोज स्नान किया है या नहीं इसका पता चलता है। जनेयू गंदा हो तो स्नान भी नाम का, वैसे ही यह बात है। कांच की चूड़ियां पहनने से काम में सावधानी और कुशलता आती है।

0: घुमक्कड़ तो विनोबा बचपन से ही था। दिन भर भटकता रहता, रात में घूम घाम कर घर आता तो अंधेरा हो जाता। घर के सभी लोग खा पीकर निश्चिंत हो जाते थे, सिर्फ माँ बेटे की राह देखती बैठती थी। वो वीना को खिलाकर तब खुद खाती, ये रोज का कार्यक्रम बन गया था। एक दिन विनोबा को आने में बहुत देर हो गई, देखा तो माँ बिना खाए बैठी है, उससे रहा नहीं गया।
1: माँ मुझे बहुत देर हो जाती है, तू पहले खा क्यों नहीं लेती?
2: तू उस बात को नहीं समझ पाएगा बेटा, जब तू माँ बनेगा तब इस बात को समझ सकेगा।

0: लड़की की माँ, और तब कभी न देखी कभी न सुनी विनोबा लीला देखने को मिली। बहुत बार सवाल उठता कि क्या ये वही बाबा है, फिर याद आ जाता कि ये तो माँ बना हुआ बाबा है। सारी मातृलीला उसने बचपन से ही अपने माँ से सीखी है। विनोबा की माँ का मायका था कर्नाटक में तुंगभद्रा के किनारे। 4 साल की उम्र में पहली बार माँ विनया को नाना के घर ले गई। इतनी छोटी उम्र में भी माँ विनया को नदी पर स्नान के लिए ले जाती थी। कड़ी ठंड के दिन हो तो भी माँ बेटे को साथ ले जाने का आग्रह रखती थी। पाँव में जूते भी नहीं रहते थे। जब ठंडी असह्य हो जाती तब विनू को स्नान से मुक्ति मिल जाती थी, परंतु माँ का स्नान तो अटल था। परंतु बच्ची के मन का समाधान कराने के लिए वे कहती,
1: खूब ठंडी है, नहाने की जरूरत नहीं बेटा, थोड़ा सा आचमन कर ले। कहावत है, गंगा स्नानम तुंगा पानम, जो फल गंगा स्नान से मिलता है वही फल तुंगा के पान से मिलता है।
0: बचपन से तपस्या, त्याग और भक्ति का भोजन बच्चों को मिला, और उसमें से पोषण पाकर सन्यासी, भक्त और सेवक का एक अनोखा व्यक्तिमत्व जगत को मिला। जीवन के अनमोल पाठ पढ़ाने वाली माँ को याद कर वे कहते हैं,
2: जन्मदात्री मेरी माँ ने मुझे बचपन से त्याग और तपस्या सिखाई, बांट कर खाना सिखाया। वैसी ही मेरी दूसरी माता वेद माता ने मंत्र दिया। दोनों माताओं के मुझ पर अनंत उपकार।
0: विनोबा को बचपन से ही धर्म ग्रंथ पढ़ने का शौक था। कुछ न कुछ पढ़ते ही रहते थे। एक दिन भक्त विजय पढ़ते पढ़ते उन्होंने माँ से कहा,
2: माँ, ऐसे संत तो केवल प्राचीन काल में ही हो सकते थे।
1: बेटा, संत तो आज भी है, बस हम उनको जानते नहीं है। यदि संत सज्जन ना होते तो फिर यह पृथ्वी टिकती किसके तप के आधार पर।
0: कितना गहरा विश्वास। खास पढ़ी लिखी न होने पर भी अपनी अंतर विद्या से माँ बच्ची को अमूल्य ज्ञान परोसा करती थी। यो भी माँ बालक की प्रथम गुरु होती है, परंतु इस मामले में तो परस्पर आदान प्रदान चलता था। माँ को किसी विषय में समाधान न होता तो वो तुरंत विनया से पूछकर समाधान पा लेती थी। माँ को इतना भी पढ़ना नहीं आता था, कभी कभी विनया उसे पढ़ना भी सिखाता था। एक दिन सुबह विनोबा जी ऊपर के कमरे में वर्ड्सवर्थ की एक कविता ऊंची आवाज में पढ़ रहे थे। माँ ने सुना तो बोली,
1: विनया, ये क्या सुबह सुबह यस फस।
2: माँ, ये अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ की अप्रतिम कविता है और मैं एक अच्छी किताब ही पढ़ रहा था।
0: जब विनोबा ने माँ को कविता का अर्थ समझाया और ये विश्वास दिलाया कि वे एक अच्छी किताब ही पढ़ रहे थे, तब वो बोली,
1: तो गलत किताब पढ़ेगा नहीं, यह मुझे पता है, और अंग्रेजी में भी अच्छे विचारों वाली किताबें होगी। अंग्रेजी पढ़ना गलत नहीं, परंतु तड़के संस्कृत पढ़ना चाहिए।
0: संस्कृत सीखने की प्रेरणा विनोबा जी को माँ से मिली। विनोबा जी को हाई स्कूल में प्रवेश लेना था। घर पर चर्चा हुई कि सेकंड लैंग्वेज के रूप में कौन सी भाषा ली जाए। फ्रेंच ली जाए, ऐसा पिता का कहना था, और उनकी बात को विनोबा ने मान भी लिया। मगर माँ की रुचि उसमें नहीं थी, उसने बेटे और पिता की बातें सुन ली थी। शाम को जब विनोबा स्कूल से लौटकर जब भोजन करने बैठा तो माँ उसके पास आकर बैठी और पूछा,
1: तूने कौन सा विषय चुना।
2: मैंने फ्रेंच विषय चुना।
1: ब्राह्मण का बेटा संस्कृत नहीं सीखेगा।
2: ब्राह्मण का बेटा है तो संस्कृत सीखेगा ही, परंतु संस्कृत स्कूल जाके सीखे ये जरूरी नहीं।

0: माँ के उन शब्दों का इतना गहरा असर पड़ा जिसका वर्णन विनोबा भी कर नहीं सकते। आगे उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, उसके अलावा 15-20 भाषाएं भी सीखी। लगभग 1915 की बात है, बड़ौदा में एक प्रवचनकर्ता आए थे। वे गीता का प्रवचन करते थे। विनोबा जी की माँ रोज रात उनका प्रवचन सुनने जाती थी। 2-4 दिनों बाद वो विनोबा से बोली,
1: विनिया, वो गीता पर बोलते हैं और मुझे कुछ भी नहीं समझता, मुझे एक मराठी गीता की पुस्तक ला कर दे।
2: ये लो किताब गीता की जो मराठी में है।
1: अरे ये तो गद्य है, मुझे पद्य वाली ला दो।
0: गद्य की अपेक्षा पद्य शायद पढ़ने में आसान होता है। उस समय वामन पंडित की समझ लो की गीता, यही पद्य अनुवाद उपलब्ध था। वो किताब विनोबा ने माँ को ला कर दी। कुछ दिनों बाद वो बोली,
1: विनिया ये कठिन है, समझ में नहीं आती।
2: तो क्या करें, इससे अधिक सरल अनुवाद मिला ही नहीं।
1: तू ही क्यों नहीं कर सकता मेरे लिए गीता का मराठी अनुवाद, तू ये कर सकता है।
0: उसका बेटा गीता का पद्य में अनुवाद कर सकेगा, ऐसा विश्वास उस माँ को कहाँ से आया ये भगवान ही जाने। शायद विनोबा को कविता लिख लिख कर अग्नि को समर्पित करते हुए देख लिया होगा। जो भी हो, परंतु उस विश्वास ने विनोबा में अटूट शक्ति भर दी। माँ की मृत्यु के कुछ साल बाद विनोबा को गीता का मराठी पद्यानुवाद करने की प्रेरणा हुई और जेल में उन्होंने वो अनुवाद कर डाला और उस अनुवाद को उन्होंने गीताई यानी गीता आई, गीता माता, मराठी में माँ को आई कहते हैं, ये नाम दिया। गीताई में आई माँ का सर्वोत्तम स्मारक रचा गया है। विनोबा कहते हैं,
2: जब मैं गीता का थोड़ा बहुत अर्थ समझने लगा तब मेरी माँ चल बसी।

0: उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे गीता माता की गोद में सौंप कर गई है। माँ गीते, मैं आज तक तेरे ही दूध से पला हूं, आगे भी मुझे तेरा ही सहारा है।
1: विनोबा के व्यक्तित्व में वैराग्य वृत्ति उनकी अपनी संपत्ति है। वैसे उनकी मां में वैराग्य और भक्ति भरी पड़ी थी। 30 पर भी ऐसा लगता है कि विनोबा पूर्व जन्म की कमाई करके लाए हैं। शंकराचार्य, ज्ञानदेव उनकी प्रेरणा और श्रद्धा के केंद्र में रहे हैं। बेशक ब्रह्मचर्य और वैराग्य के मूल को सिंचित करने वाली माँ तो थी ही, परिणाम स्वरूप बचपन से ही इस दिशा के उनके विचार स्पष्ट और मजबूत रहे। महाराष्ट्रियों में एक रिवाज है कि यज्ञोपवीत संस्कार के समय जब लड़का भाग जाता है तो मामा अपने भांजे को मनाता है कि भागो मत, मैं तुम्हें अपनी लड़की ब्याह दूंगा। इस रिवाज का विरोध करते हुए 12 साल की उम्र में ही विनोबा ने आजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ले ली। पितराई भाई महादेव भी इस व्रत का साथी था। तब से ब्रह्मचर्य वाला कठोर जीवन विनोबा का शुरू हो गया था। माँ विनया का बिस्तर बिछाकर रखती तो सोते समय विनया उसे हटाकर कंबल बिछाकर सो जाता।
2: तुमने गद्दी क्यों हटा ली?
0: ब्रह्मचारी को नरम गद्दी पर नहीं सोना चाहिए, ऐसा नियम है।
2: विनया, ईश्वर ने मुझे स्त्री बनाया है, इसलिए मैं मजबूर हूँ। यदि मुझे पुरुष बनाया होता तो मैं तुझे दिखाती कि वैराग्य क्या चीज है।
0: माँ की वृत्तियां देखकर मुझे तनिक भी संदेह नहीं होता कि वह वैसा न कर पाती।
1: अपने बच्चों की शादी हो, लड़के के भी पुत्र पौत्रादि को देखकर देह छूटे, ऐसी वासना कई माता पिताओं की रहती थी। परंतु ये माँ तो कोई न्यारी ही थी। वो अपने पुत्रों को सिखाती थी,
2: विनया, गृहस्थाश्रम का पालन अगर सही तरीके से अच्छी तरह से किया गया तो एक पीढ़ी का उद्धार होता है, परंतु ब्रह्मचर्य का यदि उत्तम पालन किया जाए तो 42 पीढ़ियों का उद्धार होता है।
1: विनोबा की माँ की उम्र 36 वर्ष की थी। तब से उनके माता पिता ने माँ की प्रेरणा से ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। ये बात माँ के जाने के बाद पिता ने विनोबा को बताई। विनोबा कमाल के आलसी थे। वे कहते,
0: मैं पहले से ही बहुत आलसी हूँ। शादी न करने के पीछे ब्रह्मचर्य का विचार तो है ही, उसके साथ साथ गृहस्थी का संसार खड़ा करने में मुझे बड़ा आलस भी लगता है।
1: जब वे शाला में पढ़ते थे तब गर्मी के दिनों में माँ बड़ौदा की गर्मी सहन न कर पाने से कोंकण चली जाती थी। बच्चे सब पढ़ाई के लिए बड़ौदा में ही बने रहते थे। माँ जाते समय विनय से कह जाती थी,
2: देख बेटे, इस अलमारी में 5 रुपए रख जाती हूँ, आम के मौसम में आम खरीदना और खूब खाना।
1: छुट्टी पूरी होने पर माँ लौटती तो घर की सफाई करते समय उस अलमारी में देखती तो वे 5 रुपए वहीं के वहीं धरे हैं। माँ पूछती,
2: क्यों रे विनया, तूने आम खाए ही नहीं क्या?
0: अरे माँ, बाजार में जाए कौन, आम खरीदे कौन और घर पर लाकर खाए कौन।
2: विनया, मैं मंदिर जा रही हूँ, पिंजड़े में खाना पड़ा है, भूख लगे तो खा लेना।
1: माँ मंदिर से वापस आकर देखती कि विनया पढ़ने में ही तन्मय है तो पूछती,
2: क्यों बेटा, कुछ खाया तूने?
0: अरे माँ, अलमारी खोले कौन, थाली में निकाले कौन और खाए कौन।
1: शंकराचार्य का एक श्लोक है कि अनिवार्य कर्म ही करना और सो भी अनासक्ति के पथ्य के साथ। विनोबा ने बचपन से ही गुरु के इस आदेश का पालन करना शुरू कर दिया था। एक बार विनोबा के पिता बड़ौदा से दीपावली की छुट्टियों में घर पर आने वाले थे। माँ ने अपने बच्चों को पहले से ही कह रखा था कि तुम्हारे बाबा आएंगे तो तुम्हारे लिए कुछ मिठाइयाँ लाएंगे। जब पिताजी आए तो उनके हाथों में बच्चों ने लाल पीले रंग का चौकोना पैकेट देखा। विनोबा को लगा कि उसमें बर्फी होगी। इतने में पिताजी ने ही ऊपर का कागज निकाल दिया और कहा,
3: लो बेटा, तुम्हारे लिए है ये बाल रामायण, बाल महाभारत और बाल भागवत की मिठाइयाँ।
0: देखो माँ, बाबा हमारे लिए मिठाइयाँ लाए हैं।
2: बेटा, इससे अच्छी मिठाइयां और क्या होगी।

0: उन मिठाइयों का चस्का विनोबा को बचपन से जो लगा है आज तक छूटा नहीं। पदयात्रा के अत्यंत व्यस्त जीवन क्रम में भी उनका पुस्तक पठन जारी ही रहा। इहलोक में रहते हुए भी उन्होंने अपना एक लोक बना लिया है, जहां दुनिया भर के नामी अनामी संत महानुभावों का दरबार लगा रहता है। नरहरि भावे, विनोबा के बाबा का जन्म 1875 ईस्वी सन में हुआ था। उनके व्यक्तित्व में अनेक विरल सद्गुणों का सुभग समुच्चय हुआ था। वैज्ञानिक तो वे थे ही, संगीतज्ञ भी थे। कला और विज्ञान के दो पंखों से उन्होंने जीवनाकाश में विहार किया। वैज्ञानिक होने के नाते सिर्फ अपने कमरे की प्रयोगशाला में उनके प्रत्यक्ष प्रयोग चलते थे। वैज्ञानिक ढंग से खाना पीना रहना सोचना और जीना, ये उनकी जीवन पद्धति थी। उनके जीवन में सादगी थी, संयम था, नियमितता थी, सातत्य था। वैज्ञानिक पिता बच्चों को समझाते थे,
1: अरे मुंह में कौर रखते हो तो वह मीठा लगता है, फिर उसको अंदर जल्दी धकेल देने में उतावली क्यों करते हो, पेट में वह थोड़े ही मीठा लगने वाला है। स्वाद का स्थान तो जीभ है, मुंह है, तो थोड़ी देर खाना वही रहने दो, चबा चबा कर उसका स्वाद बराबर लो, फिर उसे पेट में जाने दो।
0: सचमुच में पिता का सारा वैज्ञानिक काम चलता। माँ जाने के बाद 30 साल वे जिए, उसमें उन्होंने आहार के अनेक प्रयोग किए। करीब 20 साल वे केवल दूध पर ही रहे, बीच बीच में सोयाबीन लेते थे। जब माँ का देहांत हुआ तब एक बार बालकोबाजी की इच्छा हुई कि पिताजी पर माँ की मृत्यु का क्या असर है पूछ ले, तो उन्होंने पूछा,
2: बाबा माँ गई तो उसका आप पर क्या असर हुआ?
1: तुम्हारी माँ गई तो मेरी तबीयत जरा ठीक रहती है, मैं संयम और विज्ञान से बरतने वाला आदमी हूँ। फिर भी एक समय का भोजन मैंने तुम्हारी माँ के हाथ में रखा था, वह जो खिलाती थी खा लेता था, अच्छा बुरा नहीं देखता था। परंतु अब वह गई तो मुझे जो चाहिए सो खा लेता हूँ।
0: इस प्रत्युत्तर को याद करके विनोबा गदगद होकर कहते हैं, कितने वैराग्य का उत्तर है। करीब करीब तुकाराम की भाषा है, बाई मेली मुक्त झाली देवा मला सोडवली, यानी पत्नी मरी तो वो भी मुक्त हुई, मुझे भी मुक्त किया।
3: पिताजी योगी थे, गणितज्ञ थे, शास्त्रज्ञ थे, वे 35 साल व्रतस्थ रहे तो सहज रहे ऐसा देखा, परंतु उसकी प्रेरणा उन्हें माँ से मिली। माँ के अस्पष्ट बोलने से ख्याल तो आ ही गया था, परंतु माँ के जाने के बाद बाबा ने खुद ये कहा।
0: विनोबा जी के पिताजी रसायन शास्त्री थे, वे रंग के विविध प्रयोग करते रहते, कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को रंगते और फिर कौन सा रंग कच्चा है, कौन सा पक्का, कौन सा रंग धूप में टिकेगा, कौन पानी में टिकेगा, कौन रंग दोनों में, इस तरह से अलग अलग प्रयोग करते रहते थे। उन छोटे छोटे टुकड़ों की उन्होंने एक पुस्तक भी तैयार की थी। एक बार माँ ने कहा,
4: जैसे छोटे छोटे टुकड़े रोज रंगते हो, उसके बजाय मेरी एक हाथ साड़ी रंग देते तो पहनने के काम आती।
1: यदि प्रयोग सफल हुआ तो इसमें एक नहीं अनेक साड़ियां मिलेगी, परंतु जब तक प्रयोग सफल नहीं हुआ तब तक तो टुकड़े ही हाथ में रहेंगे।
0: छोटे छोटे तौलिए पर अ से ज्ञ तक अक्षर घर में ही झांप कर वो बच्चों को देते थे, जिससे उनमें किताबें लपेटकर बच्चे स्कूल में जाए और नजरों के सामने अक्षर रहे तो आसानी से लिखा जाए। बड़ौदा में कपड़े की पहली मील शुरू हुई तो उनको बहुत आनंद हुआ। उस दिन घर आकर वे सबको इतने आनंद से खबर देने लगे कि माँ कहने लगी,
4: आज तो आपको बहुत आनंद हुआ होगा, इतना आनंद तो विनु के जन्म की वार्ता सुनकर भी नहीं हुआ होगा।
1: भारत का आधुनिकीकरण होना चाहिए, मशीनरी आनी चाहिए।
0: जब गांधी जी ने ग्रामोद्योग संघ शुरू किया और हाथ से कागज बनाने का उद्योग शुरू किया, ये सन 1934 की बात है, पिताजी ने विनोबा को एक पत्र लिखा था। 10-12 पन्नों का वो पत्र था, कागज के रंग में कुछ नीलापन था। पत्र में लिखा था,
1: इस पत्र की सब क्रियाएं मेरे हाथ से हुई है, कागज मैंने बनाया, जो स्याही इस्तेमाल की है वह मैंने बनाई, जिस कलम से पत्र लिखा वह कलम मैंने बनाई, और पत्र भी मैंने खुद लिखा है, कागज में कुछ नीलापन रह गया है, वह निकाल सकते हैं, परंतु उसे निकालने के लिए द्रव्य बाहर से मंगवाना पड़ेगा, इसलिए वैसा ही रहने दिया। नीलापन खराब तो नहीं?
3: मुझे आज भी बाबा का वो पत्र याद है, परिपूर्ण स्वावलंबन का द्योतक वह पत्र था, परंतु दुर्भाग्य से वो पत्र अब कहीं नहीं मिलता। मुझे वो संभाल कर रखना चाहिए था, लेकिन मैंने अपने नाम आए कोई भी पत्र संभाल कर नहीं रखे, उसी में शायद वो भी गया।
0: विनोबा के पिता की समय निष्ठा अत्यंत दृढ़ थी। बड़ौदा में उनके एक मित्र थे जिनके घर रोज शाम को ये शतरंज खेलने जाया करते थे। रोज आधा घंटा शतरंज खेलना, उससे कम भी नहीं और अधिक भी नहीं। बीच में माँ कुछ दिन अपने मायके गई तो बच्चे उस मित्र के घर पर रहते थे। उस वक्त पिताजी अपने घर पर रहकर रोज शाम को नियमानुसार खेलने आते थे। 7 बजे उठ जाने का उनका नियम था। सामने घड़ी रखकर खेलते थे। कभी कभी 7 बजते और खेल अधूरा रह जाता। पिताजी उठ खड़े हो जाते तो मित्र कहते,
5: बैठिए ना, अभी तो न कोई जीता न कोई हारा, 5 मिनट में पूरा हो जाएगा।
1: खेल तो कल भी खत्म हो सकता है, इसको ऐसा ही छोड़ दो, कल यहीं से शुरू करेंगे।
0: उनको कोई मना नहीं कर सकता था, ये उनका नित्य का नियम था, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बात का जिक्र करते हुए उनके मित्र बहुत बार विनोबा से कहते, देखो ये कुर्सी तुम्हारे पिता की है, हमेशा इसी कुर्सी पर वो बैठते थे। विनोबा भी शतरंज खेलने में प्रवीण थे, पिताजी से भी अच्छा वे खेल लेते थे। परंतु एक रात को स्वप्न में शतरंज का खेल आया तो दूसरे ही दिन से उन्होंने शतरंज खेलना छोड़ दिया। इस पर विनोबा ने कहा,
3: खेल तो मैं विनोद के लिए खेलता हूँ, परंतु वो अगर स्वप्न में आकर मुझ पर सवार होकर अपनी सत्ता जमाने लगे, ये कैसे हो सकता है।

0: अभी तक आपने जाना कि युवा विवेकानंद कई तरह से धार्मिक तथा आध्यात्मिक मतवादों से परिचित होकर विचलित हो गए। सत्य क्या है इसकी खोज में वे भटकते रहे। अंततः डॉक्टर रामचंद्र दत्त के कहने पर दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण ठाकुर से मिलने गए। वहां उन्होंने ठाकुर के कहने पर गाने भी गाए। इस ऐतिहासिक मुलाकात से नरेंद्रनाथ के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। इस मुलाकात का वर्णन उन्होंने खुद इस तरह किया है।
1: गाना तो मैंने गाया, उसके बाद ही श्री राम कृष्ण देव एकाएक उठकर मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में उत्तर की ओर बरामदे में मुझे खींच ले गए। उस समय शीतकाल था। उत्तरी हवा रोकने के लिए बरामदे के खंभों के बीचों बीच टट्टे घिरे हुए थे, इसलिए वहां भीतर जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर देने से कमरे के भीतर या बाहर के किसी व्यक्ति को देखा नहीं जा सकता था। बरामदे में प्रविष्ट होकर श्री रामकृष्ण देव द्वारा दरवाजा बंद कर देने पर मैंने सोचा, संभवतः एकांत में मुझे उपदेश देंगे, परंतु उन्होंने जो कुछ कहा और किया वो कल्पनातीत है। एकाएक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनके नेत्रों से आनंद अश्रु की धारा बहने लगी और पूर्व परिचित की तरह मुझे परम स्नेह से संबोधित करते हुए कहने लगे, तू इतने दिनों बाद आया, मैं तेरे लिए किस प्रकार प्रतीक्षा कर रहा था तू सोच भी नहीं सकता। विषयी मनुष्यों के व्यर्थ के प्रसंग सुनते सुनते मेरे कान जले जा रहे हैं। मन की बात किसी से न कह सकने के कारण मेरा पेट फूलता जा रहा है। आदि आदि वे कितनी ही बातें कहने लगे और रोने लगे। दूसरे ही क्षण मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और देवता की तरह मेरे प्रति सम्मान दिखाकर कहने लगे, मैं जानता हूं प्रभु, आप वही पुरातन ऋषि नर रूपी नारायण हैं। जीवों की दुर्गति दूर करने के लिए आप पुनः संसार में अवतीर्ण हुए हैं। मैं तो उनके इस प्रकार के आचरण से एकदम अवाक और स्तंभित रह गया। मन में सोचने लगा, मैं किसे देखने आया हूं, ये तो एकदम उन्माद हैं। मैं तो विश्वनाथ दत्त का पुत्र हूं, मुझसे ऐसी बातचीत। जो भी हो मैं चुप रह गया। अपूर्व पागल, जो मन में आया कहते चले गए। थोड़ी देर बाद मुझे वहीं ठहरने के लिए कहकर वे कमरे में चले गए और मक्खन मिश्री तथा कुछ मिठाई लाकर अपने हाथ से मुझे खिलाने लगे। मैं कहने लगा, मुझे मिठाइयां दे दीजिए, साथियों के साथ खाऊंगा, परंतु उन्होंने मुझे सब कुछ खिलाकर ही छोड़ा। इसके बाद मेरा हाथ पकड़कर उन्होंने कहा, बोल तू जल्दी ही एक दिन मेरे पास अकेला आएगा तो। उनके इस आग्रहपूर्ण अनुरोध को टाल न सकने के कारण लाचार होकर आऊंगा कह दिया और उनके साथ साथ कमरे में आकर अपने साथियों के साथ बैठ गया।
2: कमरे में श्री रामकृष्ण के समीप कई लोग बैठे थे। उन्होंने कहा,
3: देखो देवी सरस्वती के ज्ञान लोक से नरेंद्र कैसा चमक रहा है। अच्छा नरेंद्र, बता तो क्या तुझे सोने से पहले ज्योतिपुंज दिखाई पड़ता है?
1: जी हां।
3: वाह, सब कुछ ठीक ठाक मिलान होता जा रहा है। अरे ये तो ध्यान से धैर्य, जन्म से ही ध्यान से धैर्य।
0: नरेंद्र बैठे बैठे सब कुछ देखते रहे। उन्होंने देखा कि ठाकुर की चाल ढाल, बातचीत और दूसरों से व्यवहार में उन्माद जैसा कुछ भी नहीं है। वरन उनकी सत्कथा एवं भाव समाधि को देखकर नरेंद्र में यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि ये सचमुच ही ईश्वर के लिए सर्वस्व त्यागी है तथा ये मुख से जो कुछ कहते हैं उसका स्वयं अनुष्ठान भी करते हैं। ये अत्यंत सहज सरल भाषा में उच्च आध्यात्मिक बातें करते हैं। इसी से नरेंद्र को लगा ये संभवतः सचमुच एक उच्च सत्य दृष्टा महापुरुष है। अतएव जो प्रश्न आज तक वे धर्माचार्यों से पूछते आए हैं वही प्रश्न लेकर उनकी ओर आगे बढ़े और जिज्ञासा प्रस्तुत की।
1: महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है?
3: हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक जैसे तुम लोगों को देखता हूं, बल्कि इससे भी और अधिक स्पष्टता से। तुम लोगों को जैसे देख रहा हूं, तुम लोगों से जैसे बातचीत कर रहा हूं, वैसे ही ईश्वर को भी देखा जाता है और उनसे बात की जा सकती है। परंतु वैसा कौन चाहता है? लोग स्त्री पुत्र के शोक में घंटों आंसू बहाते हैं, विषय और धन के लिए तरसते रहते हैं, परंतु ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ ये कहकर कौन रोता है? मैं उन्हें पा नहीं सका, ऐसा कहकर कौन व्याकुल होकर उन्हें पुकारता है? उन्हें मैं पा न सका तो वे अवश्य ही दर्शन देते हैं।
1: उनके श्रीमुख से ऐसी बात जानकर मुझे लगा कि अन्य धर्म प्रचारकों की तरह वे कल्पना या रूपक का सहारा लेकर व्याख्यान नहीं देते, यथार्थ में ही सब कुछ छोड़कर संपूर्ण मन से ईश्वर को पुकार कर जो कुछ प्रत्यक्ष अनुभव किया वही कर रहे हैं। पागल होने पर भी ईश्वर के लिए वैसा त्याग संसार में विरले मनुष्य ही कर सकते हैं। उन्माद होने पर भी ये महापुरुष पावन, पवित्र और त्यागी हैं। इसी कारण मानव हृदय की श्रद्धा, पूजा और सम्मान पाने के ये यथार्थ अधिकारी हैं।
0: इस प्रकार सोचते हुए उस दिन ठाकुर को प्रणाम कर उनसे विदा लेकर वे कलकत्ता लौट आए।
2: इस पहली मुलाकात के बाद लगभग महीने भर तक नरेंद्र दक्षिणेश्वर नहीं गए, पर बाद में उन्हें अपना फिर वहां जाने का वादा याद आया और इस बार वे अकेले कलकत्ते से दक्षिणेश्वर तक पैदल ही चले गए।
1: दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी कलकत्ते से इतनी दूर होगी ये पहले एक बार गाड़ी से जाकर मैं समझ नहीं सका था। वराह नगर से दाशरथी, सान्याल, सातकड़ी, लाहड़ी आदि मित्रों के घर तो मैं कभी जाया करता था। मैंने सोचा था कि रानी रासमणि का बाग उन मित्रों के घर के समीप ही कहीं होगा, परंतु जितना ही चलने लगा रास्ता समाप्त ही नहीं होता था। अंत तो गतवा पूछते पूछते किसी तरह दक्षिणेश्वर पहुंच गया और एकदम श्री रामकृष्ण के कमरे में उपस्थित हो गया और देखा वे पहले की तरह छोटी चौकी पर अकेले अपने ही भाव में विभोर बैठे हैं। पास में कोई नहीं था। मुझे देखते ही आनंद से बुलाकर अपने पास बिठाया। बैठने के बाद ही मैंने देखा न जाने किस प्रकार के भाव में वे तन्मय हो गए हैं और अस्पष्ट स्वर से कुछ कहते हुए स्थिर दृष्टि से मेरी ओर देखकर धीरे धीरे सरकते आ रहे हैं। मैंने सोचा संभवतः ये पागल पहले दिन की तरह फिर कोई पागलपन कर बैठेगा। ये सोच ही रहा था कि उन्होंने एकाएक मेरे पास आकर अपना दाहिना पैर मेरे अंग पर संस्थापित कर दिया और उसके स्पर्श से क्षण भर में मेरे भीतर एक अपूर्व उपलब्धि होने लगी। आंखें खोलकर मैं देखने लगा कि घर की दीवारों के साथ सारी चीजें घूमती हुई कहीं विलीन होती जा रही हैं और सारे ब्रह्मांड के साथ मेरा शुद्र अहम भाव सर्वव्यापक महाशून्य में विलीन होता जा रहा है। उस समय भय से मैं घबरा उठा, सोचने लगा अहम भाव का नाश ही तो इस बात का संकेत है कि मृत्यु सामने बहुत समीप आ गई है। अपने को संभाल न सकने के कारण मैं चिल्ला उठा, अजी अजी आपने मेरी ये कैसी अवस्था कर डाली, मेरे तो मां बाप हैं। मेरी बात सुनकर वो अद्भुत पागल खिलखिलाकर हंस पड़ा और मेरा हाथ पकड़कर छाती से स्पर्श करते हुए कहा,
3: अच्छा तो फिर अभी रहने दो, एकदम ही होने की कोई जरूरत नहीं, समय आने पर अवश्य होगा, समय आने पर होगा।
1: आश्चर्य की बात यह है कि उनके स्पर्श से और ये बात कहते ही मेरे अपूर्व दर्शन विलुप्त हो गए, मैं प्रकृतिस्थ हो गया और कमरे के भीतर तथा बाहर सभी पदार्थों को पहले की तरह अवस्थित देखने लगा। इस बात को कहने में तो इतना समय लगा, पर असल में तो वो घटना बहुत ही थोड़े समय में हो गई और उससे मेरे मन में एक युगांतर उपस्थित हुआ। स्तब्ध होकर मैं सोचने लगा, ये क्या हुआ? एक अद्भुत पुरुष के प्रभाव से भाव एकाएक उपस्थित हुआ और लुप्त भी हो गया। पुस्तक में मैस्मरिज्म यानी मोहिनी इच्छा शक्ति संचारण और हिप्नोटिज्म यानी सम्मोहन विद्या के संबंध में पढ़ा था। सोचने लगा कि यह भी कुछ वैसा ही होगा, किंतु यह सिद्धांत चित्त में ठहर न सका, क्योंकि दुर्बल मन के ऊपर ही प्रभाव डालकर प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न व्यक्ति वैसी अवस्था ला देते हैं, परंतु मैं तो वैसा नहीं हूं, बल्कि अब तक अपने को विशेष बुद्धिमान और मानसिक शक्ति संपन्न मानता आया हूं। विशेष गुणयुक्त पुरुष के संग से साधारण व्यक्ति जिस प्रकार मोहित हो जाते हैं और उनके हाथ के खिलौने बन जाते हैं, मैं तो उन्हें देखकर वैसा नहीं हुआ हूं, बल्कि आरंभ से ही मैंने इन्हें आधा पागल समझ रखा है। अतः मेरे भीतर एकाएक इस प्रकार का भाव आने के कारण क्या है? मैं यही सब सोचता विचारता रहा, पर कुछ निश्चय नहीं कर सका। हृदय में कुछ हलचल सी मच गई। महाकवि शेक्सपियर की बात याद आई, पृथ्वी और स्वर्ग में ऐसे अनेक तत्व हैं जिनके रहस्य भेद की मनुष्य बुद्धि द्वारा रचित दर्शन शास्त्र कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने सोचा ये भी वैसा ही कुछ होगा। सोच विचार कर निर्णय किया कि इनकी बात अभी समझ में नहीं आएगी और दृढ़ संकल्प कर लिया कि ये अद्भुत पागल अपना प्रभाव डालकर भविष्य में कभी वशीभूत करके वैसा भावांतर उपस्थित न कर दे। फिर ये सोचने लगा कि इच्छा मात्र से ये पुरुष यदि मेरे जैसे प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न चित्त के दृढ़ संस्कार युक्त गठन को इस तरह तोड़ फोड़ कर मिट्टी के लांदे की तरह अपने भाव में ढाल सकते हैं, तो उन्हें पागल कैसे समझूं? किंतु प्रथम दर्शन के दिन मुझे एकांत में ले जाकर उन्होंने जिस तरह संबोधित करते हुए बातें की थी, उससे इन्हें पागल के अतिरिक्त और मान सकता हूं। अतः अभी जो उपलब्धियां हुई उनका कोई कारण मैं नहीं पा सका और इस शिशु सदृश पवित्र तथा सरल पुरुष के संबंध में कुछ स्थिर निश्चय ही कर पाया। बुद्धि का उन्मेष होने के अनंतर खोज और तर्क युक्ति की सहायता से प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति के संबंध में एक मतामत स्थिर किए बिना मैं कभी निश्चित नहीं हो सका। उसी स्वभाव में आज एक प्रचंड आघात प्राप्त हुआ है। इससे हृदय में वेदना उत्पन्न हुई। फलस्वरूप मन में पुनः प्रबल संकल्प का उदय हुआ, जैसे भी हो सके इस अद्भुत पुरुष के स्वभाव और शक्ति की बात अवश्य ही समझनी होगी। उस दिन उस प्रकार की विविध चिंताओं एवं संकल्पों से मेरा समय बीतने लगा, परंतु श्री रामकृष्ण देव उस घटना के बाद मानो एक दूसरे ही व्यक्ति बन गए और पहले दिन के समान अनेक प्रकार से मुझे प्रेम पूर्वक खिलाने तथा सभी विषयों में पूर्व परिचित की तरह आचरण करने लगे। अत्यंत प्रिय आत्मीय अथवा घनिष्ठ मित्र को बहुत दिनों के बाद सामने पाने पर लोगों में जिस प्रकार का भाव होता है, मेरे साथ भी उन्होंने वैसा ही व्यवहार किया था। खिलाकर, बातचीत कर, प्यार और हास परिहास करके भी उन्हें मानो तृप्ति नहीं हो रही थी। वैसे उनके प्यार तथा व्यवहार का कारण न ढूंढ पाने पर मैं और भी सोचने लगा। क्रमशः संध्या होते देखकर मैंने उस दिन उनसे विदा लेनी चाही, परंतु उससे वे बहुत ही अप्रसन्न होकर बोले फिर शीघ्र ही आएगा तो। लाचार होकर मुझे पहले दिन की तरह वचन देकर ही लौटना पड़ा।
0: इस घटना के हफ्ते भर बाद नरेंद्र एक बार फिर दक्षिणेश्वर गए। श्री रामकृष्ण के संबंध में संदेह आदि के निराकरण करने के लिए वे अधीर हो उठे थे। उस दिन भी ठाकुर ने नरेंद्र के साथ बगीचे में और गंगा तट पर कुछ समय टहल कर बातचीत की और लौटकर बैठक में बैठते ही समाधिस्थ हो गए। उसी समय अचानक रामकृष्ण देव ने समाधि से जागकर नरेंद्र के पास आकर उन्हें स्पर्श किया। तुरंत नरेंद्र जैसे बेसुध से हो गए। क्या घटित हुआ वे कुछ भी समझ नहीं पाए। चेतना लौटने के बाद उन्होंने देखा कि ठाकुर उनके वक्षस्थल पर हाथ फेर रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं।
2: कई दिनों के बाद पूछने पर रामकृष्ण ने बताया था कि वे पहले से ही नरेंद्र के बारे में जानते थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि वे कब आएंगे। उस दिन उन्होंने नरेंद्र की अचेतन अवस्था में उससे पूछा था कि वो कौन है, कहां से आया है, क्यों आया है, कितने दिनों तक पृथ्वी पर रहेगा, और उसने सब बातों का सही सही जवाब दिया था।
0: इधर इन तीन दिनों की जानकारी के फलस्वरूप श्री रामकृष्ण के संबंध में नरेंद्रनाथ की धारणा में आमूल परिवर्तन हुआ था, ये कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने समझ लिया था कि श्री रामकृष्ण देव उन्माद पूर्ण नहीं बल्कि दैवी शक्ति से परिपूर्ण और ईश्वरानुभूति संपन्न एक महापुरुष हैं। भगवत इच्छा के साथ उनकी इच्छा पूर्णतया एक होने से वे दूसरों का महाकल्याण करने में समर्थ हैं। इस प्रकार के त्याग, पवित्रता, सरलता और करुणा से विभूषित व्यक्ति के हाथों में अपने जीवन के नियमन और परिचालन का दायित्व सौंप देने पर ही मनुष्य कृतार्थ होता है।
2: वस्तुतः अपनी प्रखर बुद्धिमता और ब्रह्म समाज के प्रभाव से यद्यपि वे गुरु के रूप में किसी को ग्रहण करने में विश्वास नहीं रखते थे, तथापि इन कुछ दिनों की जानकारी के फलस्वरूप उनके विचार में परिवर्तन आ गया। निश्चय ही उस समय भी वे बिना विचारे श्री रामकृष्ण देव की सभी बातों को मान लेने को तैयार नहीं थे और बिना परीक्षा लिए तथा स्वानुभाव के किसी बात को मान लेने में कोई तर्कसंगति उन्हें दिखाई नहीं पड़ती थी।
0: अब से श्री रामकृष्ण देव के प्रति उनके मन में एक श्रद्धापूर्ण प्रीति के प्रतिष्ठित रहने पर भी नरेंद्रनाथ की विचार शक्ति पूर्णतः जागृत ही रही। इन दोनों भावों के सम्मिलन एवं संघर्ष के द्वारा ही इसके बाद से इन दोनों अलौकिक महापुरुषों के मानवीय संबंध विकसित होने लगे। अर्थात यद्यपि नरेंद्र अब से श्री रामकृष्ण के ही हो गए, तथापि श्री रामकृष्ण देव ने उनकी निजी स्वतंत्रता पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया, नरेंद्र की स्वतंत्रता अक्षुण रही। श्री रामकृष्ण के उपदेश विषयक अन्य बातों के संबंध में हम लोग नरेंद्रनाथ के श्रीमुख से ही सुनते हैं।
1: ठाकुर के संग में किस प्रकार आनंद से दिन बीतते थे, दूसरों को समझाना कठिन है। खेल, हंसी, विनोद आदि साधारण विषयों पर उन्होंने किस तरह निरंतर उच्च शिक्षा देकर अनजाने में हमारे आध्यात्मिक जीवन के गठन में सहायता दी थी। उस संबंध में आज सोचने पर हमें बहुत आश्चर्य होता है। बालक को सिखाते समय शक्तिशाली पहलवान जिस प्रकार अपना संयम रखकर बालक के अनुरूप शक्ति प्रकाशित कर कभी उसे बहुत प्रयत्न के द्वारा हराकर और कभी उससे स्वयं हारकर उसके मन में आत्मविश्वास उत्पन्न कर देता है, हमारे साथ व्यवहार करते हुए भी प्रायः वैसे ही भाव का अवलंबन करते थे। वे बिंदु के भीतर सदा सिंधु का दर्शन करते थे। उसी प्रकार हम लोगों के अंतर्निहित आध्यात्मिक भाव का बीज फल फूलों के रूप में परिणित होगा, इस बात को उसी समय वे भावमुख सदा हमारी प्रशंसा किया करते थे, उत्साह देते थे और किसी खास सावधानी के साथ हमारे प्रत्येक व्यवहार के प्रति ध्यान रखकर अनेक उपदेश देते हुए हमें संयत रखते थे। परंतु वे इतना ध्यान देकर हमें सदा नियमित रखते थे, इस बात को हम उस समय बिल्कुल ही नहीं समझ सकते थे। वही उनके शिक्षा प्रदान और जीवन गठन करने का अपूर्व कौशल था।
2: श्री रामकृष्ण देव परीक्षा लेते और शिक्षा देते, फिर नरेंद्रनाथ भी श्री गुरुदेव के वचन सुनकर शिक्षा ग्रहण करते। कारण, भगवान ने उन्हें अपूर्व प्रतिभा प्रदान की थी। नरेंद्रनाथ की अनुपम मेधा शक्ति श्री रामकृष्ण देव के स्नेहाकर्षण का अन्यतम प्रधान कारण थी। अन्य भक्तगण श्री रामकृष्ण देव के जिन अमूल्य उपदेशों को साधारण भाव से ग्रहण किया करते अथवा उनके प्रति अधिक ध्यान नहीं दिया करते, उनमें नरेंद्रनाथ की प्रतिभा अत्यंत गूढ़ और फलदायी मर्म का उद्घाटन किया करती थी।
0: सन 1884 ईस्वी में किसी समय श्री रामकृष्ण कमरे में भक्तों से घिरे बैठे हैं। श्रीयुत नरेंद्रनाथ भी वहां उपस्थित हैं। विविध वार्तालाप तथा बीच बीच में सरल हास प्रयास भी हो रहा है। प्रसंगवश वैष्णव धर्म की बात उठी। उस मत का सार मर्म सब लोगों को संक्षेप में समझाकर श्री रामकृष्ण देव ने कहा,
3: तीन बातों का पालन करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहने का उद्देश्य उस मत में है, नाम में रुचि, जीव के प्रति दया और वैष्णव पूजन। जो नाम है वही ईश्वर है। नाम नामी को अभिन्न जानकर निरंतर अनुराग के साथ नाम लेना चाहिए।
0: सब जीवों पर दया कहते ही श्री रामकृष्ण देव समाधिस्थ हो गए। कुछ क्षणों के अनंतर अर्ध बाह दशा में अवस्थित होकर कहने लगे,
3: जीव पर दया, अरे कीटाणु, कीट होकर तू जीव पर दया करेगा? दया करने वाला तू कौन है? नहीं, जीव पर दया नहीं, शिव ज्ञान के साथ जीव की सेवा।
0: ये बातें सभी ने सुनी थी, किंतु उनकी भाव भंगिमा के पश्चात बाहर आकर नरेंद्रनाथ ने कहा, आज ठाकुर की बात से कैसा अद्भुत प्रकाश दिखाई पड़ा। जिस वेदांत ज्ञान को लोग शुष्क, कठोर और मतांतर रहित समझते हैं, उसे भक्ति के साथ सम्मिलित करके कैसे सहज, सरस और मधुर प्रकाश का उन्होंने प्रदर्शन करा दिया। आज ठाकुर ने भावावेश में जैसा बताया, उससे जाना गया कि वन के वेदांत को घर में लाया जा सकता है, संसार के सभी कार्यों में उसका प्रयोग किया जा सकता है। ठाकुर के इस उपदेश से भक्ति पथ में भी विशेष प्रकाश दिखाई पड़ता है। जब तक ईश्वर को सर्वभूतों में नहीं देखा जाता, तब तक यथार्थ भक्ति या पराभक्ति लाभ करना साधक के लिए संभव नहीं होता। विशेष प्रकाश दिखाई पड़ेगा। भगवान ने यदि अवसर दिया तो आज जो जो सुना इस अद्भुत सत्य का संसार में सर्वत्र प्रचार करूंगा। पंडित मूर्ख, धनी निर्धन, ब्राह्मण चांडाल, सभी को सुनाकर मुग्ध करूंगा।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आलेख डॉक्टर पापिया दास गुप्ता, निर्देशन श्रुति धर्मेश, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।